FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत

0: देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं वंदनवार रामचरितमानस गान और संगीत सरिता मुंबई केंद्र से।

प्रेम वह अनमोल कुंजी है जो जीवन में शाश्वत परम आनंद और मुक्ति का द्वार खोलती है। प्रेमानंद जीवन की ओर बढ़ें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 196। संगीत सरिता 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का आप भाग 11 सुनेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:00। हम है राही प्यार के 7:30 पर। सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 29वां प्रसारित किया जाएगा। नए गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं 8:30 पर और रात को 8:15 पर। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर सुनिएगा आज की

जानकार कार्यक्रम जो कि केंद्रित रहेगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश सुबह 10 बजे। रंग तरंग कार्यक्रम 11 बजे। बारह बजकर 5 मिनट पर सुनिएगा यादों की महफिल। सुरीला सफर आप इसका आनंद ले पाएंगे दोपहर बाद 1 बजे। दिन में 2 बजे एक बार फिर से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, इसका भाग 29वां प्रसारित होगा। सदाबहार नगमे आप सुन पाएंगे दिन में 2:30 पर। हेलो सहेली ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी, शीर्षक गोल्ड मेडल, लेखक इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी है ये, संपादन सहयोग काजल भद्रगी का है, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 4 बजे आप ये पिटारा गीतों भरी कहानी सुन पाएंगे। छाया गीत का आनंद आप लेंगे शाम 5 बजे और 5:30 पर नए तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। छः 6:35 पर शाम को संध्या रंजन का समय रहता है। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे आप सुनते हैं। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका अनोखी बीमारियां, लेखन सुमन माधुरी का है, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्भेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा शर्मा की। 10:30 पर और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये था हमारे आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा झरोखा के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का भाग 196।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत

बड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं, जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है, उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से हमारा परिचय करा रहे हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं स्टूडियोज में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें, अनूप जलोटा जी के गाए भजनों के अनगिनत एल्बम्स हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं उनके एल्बम्स के बारे में, उनके कौन से प्रिय एल्बम हैं और उसके बारे में क्या बताएंगे।
2: बहुत से एल्बम्स हैं, रिकॉर्डिंग हमने बहुत की है। पूरी रामचरितमानस रिकॉर्ड की है, भगवद गीता को गाया है और तमाम भजन जो आप सुना करते हैं, भजन संध्या, भजन

0: गंगा, भजन आरती, भजन यात्रा, इस तरह के कुछ 100-125 एल्बम्स हैं। कई और भाषाओं में गाया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, उड़िया, 9-10 भाषाओं में गाया। हर भाषा में गा के आनंद आता है, क्योंकि भाषा कोई भी हो, भाव तो वही होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार बंगाली रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग करने में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी दिन म्यूजिक कंपनी से कहा कि अब मैं कम से कम 8-10 एल्बम और बंगाली बनाना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा
1: जी।
0: और उसके बाद मैंने करीब 40 एल्बम बंगाली के बनाए। बहुत आनंद देते हैं वो भजन, आज भी मंच पे गाता हूँ जब बंगाली ऑडियंस होती है। तो भाषा बीच में आती नहीं, जब भक्ति बीच में आ जाए।
1: अनूप जी, एक बंगला रचना भी तो हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
0: जरूर सुनिए।

0: बहुत बढ़िया अनूप जी, अगर मेरी जानकारी जहाँ तक सही है, शाम चौरासी घराना पंजाब से ताल्लुक रखता है, तो फिर
1: गुरु नानक जी की एक रचना सुनाता हूँ।

हमारा जीवन भगवान का नाम लिए बगैर अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और ये समझाने के लिए बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात समझ में आती है।

0: वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना थी। और अनूप जी, भजन के चाहने वालों के लिए आप एक किताब की तरह हैं। भजन के संस्कार आप आने वाली पीढ़ी को किस तरह से देना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में भजन की परंपरा कायम रहे?
1: भजन की परंपरा तभी कायम रहेगी जब भजन सरलता से सुंदर ढंग से गाए जाएंगे। अब देखिए, सरलता का रंग

0: अनूप जी, किसी भी पूजा का समापन आरती से करते हैं, तो ये जो भक्ति भाव की धारा थी, इसका समापन भी आरती से हो तो कैसा रहे?
1: जरूर,

0: बहुत सुंदर। मन तो नहीं कर रहा है कि अब गायन की इस श्रृंखला को विराम दिया जाए, लेकिन वक्त की पाबंदी है और वक्त यहाँ आ पहुँचा है कि अब इस श्रृंखला का समापन हम करें। अपने श्रोताओं को बता दें, श्री अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन की ये थी 11वीं और अंतिम कड़ी। अब हमें अनुमति दीजिए। अनूप जलोटा जी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतना सारा वक्त दिया, श्रोताओं को अपने गायन से मंत्रमुग्ध किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी आके बहुत मजा आया।
0: अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
3: ऐसी लागी लगन, जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है, विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

ये है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। समय मिलाइए प्रातः के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार। झलड़ कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे साथियों को आपके अपने रेडियो हमदम का प्रातःकालीन नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन उन श्रोताओं का जो न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से झालावाड़ की पावन धरा से जुड़ चुके हैं। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त लोकेश व्यास। झालावाड़ की पावन धरा, जहां मुकुंदरा की छटाओं में वीरों शूरवीरों के त्याग बलिदान की गाथा गाता ये अभेद जल दुर्ग इतिहास का साक्षी है, वहीं आहू और कालीसिंध नदी के संगम स्थल पर धार्मिक आस्था जगाती संत पिपाधाम की भक्ति, ज्ञान, तप, साधना की वाणी एक अलग ही संचार हमारे तन मन में कर देती है। सुबह की ऐसी ताजगी देता सूचना, ज्ञान, मनोरंजन का यह कार्यक्रम हमारी दिनचर्या को और भी तरोताजा कर देता है। तो फिर भला देर किस बात की, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं सुविचार जो आपकी दशो दिशा बदल देगा।

कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। सही दिशा में किए गए अच्छे कर्म व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंसान को हमेशा कर्म प्रदान रहना चाहिए। आप द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे कर्मों का फल ऊपर वाला अवश्य देता है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचित्। दोस्तों, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करो और सफलता अपने आप तुम्हारा पीछा करेगी। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार कर्म के फल के बारे में ही सोचता रहे तो क्या होगा? उनके द्वारा किए गए कर्मों में उनका पूरा ध्यान नहीं रहेगा, उसे कर्म में ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वह बार बार यही सोचता रहेगा कि मुझे फल की प्राप्ति कैसे होगी। यह कुछ इस तरह का है जैसे कोई राही लंबे रास्ते पर निकला हो और चलते चलते बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहे, तो क्या होगा, रास्ता लंबा हो जाएगा, एक एक कदम उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसने चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन वह यही सोचता रहे कि यह सफर कब खत्म होगा, हमें फल के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें तो बस आगे ही बढ़ते रहना है, कर्म में ही आनंद का अनुभव करना है, कर्म ही हमें प्रसन्नता से करना है तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करोगे, अगर दूसरे व्यक्ति को इतने प्रयास से सफलता मिल गई हो तो वो तुरंत ही ऐसा सोचने लगेगा कि मुझे अभी तक क्यों कुछ नहीं मिला, तो ऐसी सोच ही उसे तुरंत निराश कर देगी, बस वह एक और बैठ जाता है, मतलब कि कर्म करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि मुझे सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलेगी। इनके बजाय अगर केवल कर्म ही करता रहे तो वह एक न एक दिन अवश्य सफल होगा, और यही गीता का ज्ञान भी है।

0: अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
0: तथा

शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिवस विशेष के क्रम में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी का कर्तव्य है। कम से कम एक पेड़ किसी खास अवसर पर जोड़ लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। आज हम देखते हैं कि विश्व की अनुमानित 80 लाख प्रजाति में से लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमारे देश में 91,000 से अधिक पशु प्रजातियां और 45,500 से अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो प्रकृति संरक्षण के अभाव में विलुप्त प्राय होती चली जा रही है। हम हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जैव विविधता हमारे जीवन का आधार है, जो भोजन है, स्वास्थ्य और पर्यावरण

संतुलन सुनिश्चित करती है। जरा सोचिए, अगर ये पशु पक्षी जीव जंतु नहीं रहेंगे तो हम पर्यावरण में या इस प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। जीव विविधता जलवायु को स्थिर रखने, जल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही हमें औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अत्यधिक दोहन के कारण जीव विविधता को भारी खतरा है। अगर हम अभी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के महत्व को नहीं समझ सके तो वो दिन दूर नहीं जब यह वन्य जीव प्रजातियां एक तरह से खत्म हो जाएगी और फिर हम पशु पक्षी वन्य प्रजातियों के मधुर संगीत सुनने से वंचित हो जाएंगे।

दोस्तों, इस समय हमने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार झालावाड़। दोस्तों, देश और समाज में जब जब संकट और बुराइयां बढ़ने लगती है तब कोई ना कोई मसीहा जन्म लेता है।

ऐसे ही आधुनिक भारत के जनक या यूं कहें भारतीय पुनर्जागरण के पिता का जन्म है, जिन्होंने समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 22 मई 1972 राधानगर बंगाल की धरा पर मोहन राय का जन्म हुआ। क्या नहीं थे राजा राम, महान भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और ब्रह्म समाज के संस्थापक। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा दोहरी लड़ाई अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े थे। राजा राम ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर

अलावा दोहरी लड़ाई अपने ही देश के नागरिकों से थी जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े थे। राजा राम ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफी सहायता की और 1825 में वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इनके जो संस्थापक ब्रह्म समाज, सती प्रणाली, ऐसी कई सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई। और वहीं अंग्रेजी, आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय भारतीय समाज में विभिन्न बदलावों की वकालत की। यही कारण है कि आपको मुगल सम्राट अकबर द्वारा, जो द्वितीय थे, राजा की उपाधि से नवाजा गया और आप राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाने लगे। आपने भारतीय समाज में तर्कवाद, समानता और मानवतावाद को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। आपने हमेशा महिलाओं के अधिकारों, अंग्रेजी शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। लोगों को देश और समाज में व्याप्त किसी भी तरह की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। ऐसी महान हस्ती को हम श्रद्धा से नमन करते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार। झालावाड़ कार्यक्रम के तुरंत पश्चात यानी 7:30 पर, शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर स्वास्थ्य विषयक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत होगा। आज का विषय रहेगा फिस्टुला, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। और जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रामकेश मीणा, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय झालावाड़। तो याद रखिएगा, प्रातः 8 से 9 तक आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर 2 3 2 5 9 3, HD कोड 07432 के माध्यम से। दोपहर 12 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा। शाम 5 युवा जगत के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और हुनर की खोज

बेहतरी बनाम स्किल। 5:10 से आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्य ऑन आकाशवाणी के 30वें एपिसोड का प्रसारण। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित कुमारी एन राजम से बातचीत। उसके बाद पुनः युवाणी कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके अंतर्गत करंट अफेयर काव्य पाठ सुनेंगे भवानी शंकर वर्मा से। जानकारी में सीखो और कमाओ और साथ ही आज का इतिहास रोजगार सूचनाएं आप तक पहुंचेगी। 7 शाम कृषक चौपाल सजेगी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चर्चा होगी। भेंटवार्ता आपको सुनवाई जाएगी। पशुओं में गर्मी में होने वाले रोग लक्षण और उपचार डॉक्टर अशोक कुमार साहू स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। जानकारी में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मौसम और वाजब आप जान सकेंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या का आज का अंक हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात 9 श्रोता सुनेंगे विभिन्न गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम सबरस। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम, उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी।

आइए दोस्तों, आपको जानकारी दे देते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। व्यापक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता अभियान है जो 25 मई गंगा दशमी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध से की थी और शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक यह एक व्यापक जन आंदोलन का रूप धारण करेगा जो राजस्थान की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हम सभी को मिलकर के भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और इस अभियान के तहत राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में बैठक आयोजित हुई और जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला कलेक्टर ने बताया है कि अभियान के तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम जिले भर में आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से तालाब, नहर और जल स्रोतों की सफाई, डी स्लिटिंग, पौधारोपण, जल चौपाल, प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, किसान चौपाल और श्रम दान जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे और स्कूलों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में भी जल संरक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। साथ ही प्रभात फेरी, कलश यात्रा, पीपल पूजन और इको फ्रेंडली उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित इसमें की जाएगी। तो अलग अलग विभागों द्वारा ये कार्य किए जाएंगे और हमें इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा।

दोस्तों, झालावाड़ में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग झालावाड़ द्वारा 25 मई से एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा और यह शिविर झालावाड़ मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम हॉल परिसर में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा और शिविर में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए

झालावाड़ सहित अन्य राज्यों की कंपनियां भाग लेंगी। इनमें स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कोटा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, SIS सिक्योरिटी ग्रुप जयपुर, ग्रो फास्ट ग्रुप और कई कंपनियां द्वारा फील्ड ऑफिसर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मशीन ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, लर्नर और सुरक्षा गार्ड जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी और इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता RTE पास या ITI डिप्लोमा धारक होनी चाहिए और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि और स्थान पर अपने मूल दस्तावेज, उनकी फोटोकॉपी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ मौजूद रहकर शिविर में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, मौसम की अगर बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी और लू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तापमान की जहां तक बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम में आर्द्रता 15% तक देखी जा सकती है और हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।

झालरापाटन शहर में हाई स्कूल टंकी से होने वाली जलापूर्ति के समय में परिवर्तन किया गया है और जलदाय विभाग के AN द्वारा त्रिवेणी नगर और गोमती सागर नगर क्षेत्र में पूर्व में प्रातःकालीन जलापूर्ति की जा रही थी जिसे अब बदलकर शाम 6 से 7 बजे तक कर दिया गया है और ये व्यवस्था कल से लागू हो गई है। दोस्तों, अगर आप झालावाड़ कोटा की ओर सफर कर रहे हैं या कोटा की ओर से झालावाड़ की ओर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। भवानी मंडी में फुट ओवर ब्रिज के स्टील गर्डर लॉन्चिंग से रेल यातायात प्रभावित रहेगा, जो कि कल भी 3 घंटे प्रभावित था। और रेलवे ने बताया कि शुक्रवार यानी कि आज फुट ओवर ब्रिज का काम चलेगा। इसके तहत 12:15 बजे से 3:15 बजे तक 3 घंटे का ब्लॉक रहेगा और कुछ ट्रेनों पर इसका असर भी रहेगा। 4 ट्रेनें देरी से चलेंगी। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचे व रेल की सूचनाओं पर ध्यान दें। और दोस्तों, इन्हीं जानकारी के साथ आज का नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त लोकेश व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।

आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से श्रोता भी सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। हमारे केंद्र से आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर अमित कुमार के गाए पुलिस पब्लिक फिल्म के इस दो गाने के साथ, और गीत असद भोपाली का है, संगीत राम लक्ष्मण का है। आज एक ऐसे अनूठे संगीतकार का स्मृति दिवस है जिसे हम श्रद्धा से याद करते हैं, तो फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, पुलिस पब्लिक फिल्म का गीत आपने सुना और आज एक ऐसी संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण, राम कौन है लक्ष्मण कौन है ये हम आपको बताए हैं दोस्तों। फिलहाल आपको बताते हैं कि राम लक्ष्मण के नाम से जो मशहूर संगीतकार जोड़ी है, तो राम तो अपने आप में राम ही रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण यानी कि विजय पाटिल, जिनका जन्म 1942 में हुआ था और आज के दिन

यानी कि 22 मई को आप इस, जी हाँ, आज ही के दिन आप इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। 1977 में राजश्री प्रोडक्शन की एजेंट विनोद फिल्म से इनकी शुरुआत हुई थी और पहले जोड़ी हुआ करती थी जिसमें विजय लक्ष्मण थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ थे, कई फिल्मों के लिए आपने यादगार संगीत दिया। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो फिल्म है, इसको साइन करते वक्त जोड़ीदार राम की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसी नाम से आगे फिल्मों में आपने संगीत दिया और छठे दौर के संगीतकार के तौर पर उन्हें राजश्री और खासकर सूरज बड़जात्या की फिल्मों के दिए गए संगीत के लिए जाना जाता है, जिसके खूबसूरत लोकप्रिय गीत हुआ करते थे। तो आइए एक और गीत आपकी नजर कर रहे हैं।

0: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को
2: निवेदन है, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
7: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
6: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
7: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है।
6: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
7: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

हम आपके हैं कौन, संगीतकार राम लक्ष्मण, जिनका कि हम आज जिक्र करें हैं विजय पाटिल लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण और राम, राम लक्ष्मण के नाम से आपने संगीत दिए हुए हैं। 16 सितंबर 1942 को आपका जन्म हुआ था और हिंदी, मराठी, भोजपुरी लगभग 150 फिल्मों के लिए आपने संगीत दिया। हमसे बढ़कर कौन 1981, 1982 सुन सजना, दीवाना तेरे नाम को 1987, और आपको बताएं दोस्तों कि 1988 निवासी तक मैंने प्यार किया, कई वर्षों बाद सफलता का स्वाद आपने चखा, और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी आपको दिया गया था, और सलमान खान की आवाज़ के रूप में आपने एस पी बाला सुब्रमण्यम को लोकप्रिय करने और लता मंगेशकर को दोबारा बढ़ावा देने के लिए भी आपको जाना जाता है।

सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

जी हाँ दोस्तों, राम कदम की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी कि लक्ष्मण साहब अकेले ही संगीत का सफर निभाते चले गए, लेकिन 22 मई 2021 को आप इस दुनिया से अलविदा कह गए। मैंने प्यार किया फिल्म की सफलता के बाद पत्थर के फूल 1991, 100 डेज 1991, दिल की बाजी 1993, प्रेम शक्ति 1994, और इसके बाद जो 1994 में हम आपके हैं कौन उनका एक और सफल साउंड ट्रैक रहा, और इसके बाद आखिर में ये जो गीत आप सुन रहे हैं 1999 हम साथ साथ हैं। लगभग 150 फिल्मों में आपने संगीत दिया, हिंदी, मराठी और भोजपुरी इसमें शामिल है, तो उन्हें आज हम श्रद्धा से याद करते हैं।

उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, हरिहरन की आवाज में हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है फिल्म 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बज रहे हैं, कुछ पलों में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग

0: कैट अलायंस आईबीसीए शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत

0: रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे

0: मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य विषयक सजीव फनिन कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस बार भी हाजिर है आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विषयक सजीव फनिन कार्यक्रम आपकी सेहत लेकर आपका दोस्त लोकेश व्यास। दोस्तों, जीवन गतिशील है और इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसी कई व्याधियां हैं जिनका समय रहते इलाज न हो तो वो आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। फिस्टूला एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति शर्म या झिझक के कारण डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं और तकलीफ बढ़ा लेते हैं। हमारा आज का विषय है फिस्टूला यानी भगंदर, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर रामकेश मीणा, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी, आयुर्वेद चिकित्सालय झालावाड़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर, नमस्ते।
0: श्रोता, हम आपको बता दें फिस्टूला यानी भगंदर, कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हैं या जो भी सवाल आप करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 232593 और एसटीडी कोड 07432। विषय आपको हमने बता दिया है फिस्टूला यानी भगंदर, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे फिस्टूला के बारे में जानना चाहेंगे कि जिसे हम भगंदर के नाम से भी जानते हैं, आखिर ये किस तरह की बीमारी है जो लोग शर्म या झिझक के कारण दिखाने से डरते हैं, कतराते हैं और शरीर में तकलीफ बढ़ जाती है।
1: नमस्कार जी, मैं सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो भगंदर है एक गुदगुद मार्ग रोग है। इसका मुख्य कारण अपना मतलब पेट की बीमारियों से ही है, जैसे रोगा सर्वे पे मंदाग्नि
0: जी।
1: सभी रोगों का मूल जड़ मंदाग्नि होता है
0: जी।
1: जैसे अपने चूल्हे में जैसे अपना आग जलाते हैं तो अगर उस पर अग्नि कम होगी तो पाचन कम होगा, पकेगा कम भोजन। उस तरह अगर भोजन मतलब धातु अग्नि या जो अपने जठराग्नि है वो मंद होगी तो अपने आप ही जो भोजन का पाचन कम होगा, पाचन कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। जो लंबे समय तक जो कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें क्या होता है, जैसे स्टूल हार्ड होता है, अपन प्रवाहन करते हैं, सुबह जैसे फ्रेश होने के लिए गए तो क्या प्रेशर तो बढ़ नहीं रहा लेकिन

0: जाके उसमें बैठ के बार बार जोर लगा रहे हैं।
1: जी
0: तो जो हार्ड स्टूल होता है, जो एनस के द्वारा जो पास आउट होता है, तो वो जो सॉफ्ट टिश्यू होता है एनस का,
1: जी
0: तो उसके अंदर अपना क्या है कि मतलब अलग से रूट बना लेते हैं, या जैसे फोड़े टाइप फुंसी टाइप से विदर्दी हो जाती है।
1: जी
0: अपन जैसे विदर्दी एक तरह से फोड़ा ही है, वो फुंसी है, एक जो रेक्टम पार्ट में के सरफेस एरिया में एक दो अंगुल के जो सरफेस एरिया पे बाहर की तरफ जो उभरती है, उसको वो वर्ण का रूप धारण कर लेती है, नाड़ी वर्ण कहलाता है वो, उसको फिस्टूला कहते हैं,
1: जी
0: फिस्टूला इन एनो
1: जी
0: उसके अंदर। और इसका मुख्य कारण तो मिथ्याहार विहार ही है। और जैसे ज़्यादातर जैसे सफ़र करना, सवारी करना, मोटरसाइकिल पे घुड़सवारी करना, आजकल तो घुड़सवारी का ट्रेंड कम ही है जनरली, लेकिन बट जैसे बिजी लाइफ में अपन जैसे आजकल मोटरसाइकिल है, आम जन मतलब जितने संसाधन हुए उससे अपना लाइफ को थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो गया है,
1: जी
0: स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस कम है। तो मेरा यही है कि अपने मूल तो है कि अपने मतलब पाचन के और विशेष ध्यान दें,
1: जी
0: हल्का लाइट खाना दें, सुपाच्य खाना भोजन टाइम पे। हमारे उसमें तीन उपस्तंभ बताए, आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य। जैसे जैसे आहार, अब मिथ्या आहार खाया तो भी अपने को दिक्कत।

0: बाहर की तरफ जो उभरती है उसको वो वर्ण का रूप धारण कर लेती है, नाड़ी वर्ण कहलाता है वो, उसको फिस्टूला कहते हैं,
1: जी
0: फिस्टूला इन एनो
1: जी
0: उसके अंदर। और इसका मुख्य कारण तो मिथ्याहार विहार ही है, और जैसे ज़्यादातर जैसे सफ़र करना, सवारी करना, मोटरसाइकिल पे घुड़सवारी करना, आजकल तो घुड़सवारी का तो ट्रेंड कम ही है जगह भी, लेकिन बट जैसे बिजी लाइफ में अपन जैसे आजकल मोटरसाइकिल है, आम जन मतलब जितने संसाधन हुए उससे अपना लाइफ को थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो गया है,
1: जी
0: स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस कम है। तो मेरा यही है कि अपने मूल तो है कि अपने मतलब पाचन के और विशेष ध्यान दें,
1: जी
0: हल्का लाइट खाना दें, सुपाच्य खाना भोजन टाइम पे। हमारे उसमें तीन उपस्तंभ बताए, आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य। जैसे जैसे आहार, अब मिथ्या आहार खाया तो भी अपने को दिक्कत होगी,
1: जी
0: जैसे गुरु आहार है आपका, जैसे पाचन तो आपको जैसे लाइट खाना मतलब हल्का खाना ही नहीं पता रहा, अपन शाम को जैसे पूड़ी बाटी पराठा पुण्य से खा लिया, कहीं शादी ब्याह में गए, लेट नाइट खाना खाया,
1: जी
0: तो वो विहार एक तो उसका मिथ्या हो गया। तो उससे डाइट के पाचन के लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए, अगर टाइम आप लेटली खाओगे तो डिले खाओगे तो उसके लिए पाचन के लिए प्रॉपर नहीं हो, तो फिर सुबह नेचुरल से आगे कॉन्स्टिपेशन होना है। इसमें मूल है कि आपको प्रवाहन नहीं करना,
1: जी
0: प्रवाहन मतलब जोर नहीं लगाना,
1: बिल्कुल
0: जोर लगाएंगे तो अननेसेसरी जो फोर्सफुली अपन उसके करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर उधर की ओर वो मतलब पंचर हो जाए एक तरह से, जो
1: जो
0: क्योंकि
1: पानी
0: एक
1: है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: या जो
0: जो
1: खून
0: भी हार्ड
1: वगैरह है,
0: स्टोन है,
1: मवाद है या ऐसी
0: मवाद है
1: चीज़
0: जो
1: बाहर आ
0: उसके,
1: जाती है।
0: अब इसको क्या श्रम के कारण कई बार क्या उसको अपन दिखा नहीं पाते हैं, अरे क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे, क्या चीज़ है, लेकिन ये आज की तारीख में महागध के रूप में हमारे आयुर्वेद में इसको माना है,
1: जी
0: जो अष्ट महागध उनमें एक भगंदर को भी उसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि आज आगे जाके ये लंबे टाइम तक अगर हो तो कैंसर के कारण बन रहा है।
1: जी
0: तो मैं श्रोताओं से मतलब निवेदन करूँगा कि वो अपने इस बीमारी के प्रति बिल्कुल निशर्माए, इसके साथ बिल्कुल निःशुल्क मतलब आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर हर ग्राम पंचायत लेवल पर, जिला स्तर पर सरकार ने सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, आपको हर तरह की सुविधा उपलब्ध है,
1: जी
0: उसको आप उसका सुविधाओं का लाभ लें हिसाब से।
1: तो कुल मिलाकर के जो आप शौच के लिए जा रहे हैं, या तो आप जब भी है इसमें जोर वगैरह ना लगाएं, इससे जो एक रिसाव है चाहे वो खून के रूप में हो या पानी
0: भाई
1: के रूप
0: उससे
1: में, गंदा पानी वगैरह बाहर आ जाता है।
0: जी सर, भाई उसमें क्या जैसे पायल्स, फिस्टुला और फिसर, ये
1: जी
0: क्या तीनों एक दूसरे के पहलो मतलब उनका मूल कारण कॉन्स्टिपेशन है। जैसे जैसे वो अपन जैसे संग्रहणी, अब आजकल के IBS भी जो चल रहा है ना वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसके अंदर लंबे टाइम तक अगर IBS का जो फिर वो पायल्स फिस्टुला की ओर कन्वर्ट हो जाती
1: एक श्रोता हमारे साथ है डॉक्टर साहब।
0: चीज़।
1: हेलो,
0: हेलो, जय सिया राम सर।
1: जय सिया राम, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
0: जी जी सर, मैं अनार सिंह बोल रहा हूँ यहाँ से, रटले बालता बिंदाखेड़ा से।
1: जी प्रश्न कीजिए, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं?
0: हाँ डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि सर बिल्कुल आखिर रात नींद नहीं आती सर। हाँ यही है, यही वो कोई बीमारी नहीं है।
1: नहीं, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि जो हमारा आज का जो विषय है वो फिस्टुला को लेकर के है।
0: वो तो है सर, पर डॉक्टर डॉक्टर साहब को तो सब मालूम है,
1: हाँ,
0: सब बीमारियों को मालूम है डॉक्टर साहब को तो।
1: अच्छा, चलिए
0: हाँ,
1: ठीक
0: हमारा
1: है
0: प्रश्न ये, नींद नहीं आती सर सारी रात।
1: जी डॉक्टर साहब।
0: आपका स्वागत है, नमस्ते, आपने बहुत जय
1: अच्छा
0: सिया राम,
1: क्वेश्चन करा।
0: जय सिया राम। जय सियाराम सर, आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए बिल्कुल
1: कहीं कहीं
0: बिल्कुल
1: मतलब अपन ही उसके लिए अपनी जो दिनचर्या है ना उसी में अपन कहीं कहीं अपन खुद उसके जिम्मेदार होते हैं भाई।
0: अच्छा, हम इतना फोन भी तो नहीं देखते सर बिल्कुल भी, कहीं यूट्यूब चैनल कहीं ऐसी कुछ भी चीजें नहीं देखते
1: भाई
0: हैं।
1: देखो, निंद्रा का मतलब होता है कि शरीर को जो बॉडी की जो थकावट हो जाती है उसका रेस्ट का नाम ही निंद्रा होती है।
0: सही सर, पर अभी तो ये गर्मी बहुत पड़ रही, काम भी पर भी नहीं जा रहे हैं हम।
1: तो आप ऐसे कोई जो मैद्य औषधि है उनका सेवन करें,
0: हम तो
1: ताकि
0: किसान हैं, किसान है किसान,
1: किसान है तो
0: खेती
1: किसान के घर
0: हाँ
1: से तो
0: खेती
1: सारी
0: बाड़ी
1: चीज़ें
0: करते हैं
1: उत्पन्न
0: सर।
1: होती है भाई, अपने जो किसान है वो सारी जो हमारे तो हर्बल जो मेडिसिन उनका प्रोडक्शन ही किसानों के घर से अपने रसोई से स्टार्ट हो जाता है।
0: सही सर,
1: अपन जैसे मेरा निवेदन है कि जैसे अपन सुबह मतलब जैसे नहाने के बाद में से एक तो क्या है अपन सरसों का तेल नाक में लगाए तो उससे क्या
0: अच्छा
1: है कि सनहन रहेगा आपका, जैसे अभी जो मौसम बढ़ रहा है ना जब ये इसमें जो गर्मियों के दिन है तो
0: हाँ,
1: बात
0: गर्मी तो बहुत, तापमान है बहुत लपक है अभी
1: एक
0: तो।
1: ये वो है कि जैसे अभी गर्मियों के लिए एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो अपने जौ आते हैं ना जौ,
0: हाँ,
1: सिक्के जौ, उसकी जो धानी सत्तू, जौ का सत्तू को जैसे मिश्री का जो पानी है ना मिट्टी के जो पात्र होता है उसके अंदर शाम के टाइम पे आधा मतलब लीटर या 250 ml जो भी आप क्वांटिटी में आप पी सकते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, इतना उसको पानी में गला

0: दीजिए मिश्री डाल के थोड़ा सा मीठे के
1: अच्छा
0: अनुसार,
1: मिश्री,
0: शुगर नहीं होनी चाहिए।
1: अच्छा, नहीं शुगर की बीमारी तो नहीं
0: हाँ,
1: है।
0: तो जो सिके हुए जो है सत्तू, उनको सुबह उसके रूप में आप जो नाश्ता लेते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसको 2 चम्मच उसमें घोल करके नाश्ते करते हो, तो दिन भर आपका जो दिन निकलेगा ना बिल्कुल,
1: हाँ
0: क्योंकि मिश्री की तासीर शीतल है
1: सही
0: और जौ में फाइबर है। तो
1: सही,
0: मैं इसी टॉपिक से उधर की ओर इसको कोरिलेट करूँगा। जैसे जो फाइबर है, तो वो जो अपन अभी जो टॉपिक चल रहा है ना अपना भगंदर वाला, जो गुदमार्ग
1: हाँ
0: वाला, तो क्या इसमें मेन रोज कारण यही होता है कि अपन के आजकल को खाने में क्या फाइबर की कमी होती है।
1: सही,
0: जी फाइबर तो उधर से आपको जो से जो में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है अपने जो अनाजों के अंदर अपन देखे तो आप उसको, एक तो आपको फाइबर मिलेगा, मिश्री की तासीर शीतवीर्य होती है तो आपको गर्मियों में शीतलता मिलेगी, और उधर जो मिट्टी का पात्र है उसकी भी
1: हाँ
0: तासीर, अपन जैसे आप कितना ही नेचुरली आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लो चाहे वो पी लो, सब मतलब वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। उससे बेस्ट है कि आप मिट्टी के पात्र से जो पानी पियोगे वो अंदर लगे आपको शीतलता का अनुभव करेगी। जब सारी चीज़ें शीतलता सब चीज़ होगी तो अपन को रिलैक्स होएगा, माइंड रिलैक्स होगा, आपको नींद आएगी प्रॉपर ढंग से। थैंक
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: यू सर।
1: जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी क्योंकि डॉक्टर साहब ने इलाज बता दिया है। आप होमकरण बन जाएंगे।
0: जी
1: नहीं
0: बिल्कुल।
1: कुंभकर्ण
0: मतलब अपने जो
1: अच्छा
0: 6 घंटे की नींद होती है वो तो आनी चाहिए, अगर नींद नहीं लेंगे तो अपन और बीमारियां फिर डेवलप होने लग जाए। क्योंकि नींद, मैंने आपको शुरू में बताया आपने सुना हो तो, हार निंद्रा ब्रह्मचर्य जी,
1: बहुत धन्यवाद सर,
0: हार।
1: बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है सर, थैंक यू।
1: फोन करने के लिए शुक्रिया
2: डॉक्टर साहब। ये तो हमारे श्रोता थे जिनको की जो है वो नींद नहीं आ रही थी, और ऐसे जो लाखों श्रोता हैं जो फिस्टुला से या पाइल्स से पीड़ित हैं, और इसके लिए किस वजह से ये रोग होता है, व्यक्ति कैसे पहचान सके कि उसे फिस्टुला की शिकायत हो गई है, या प्रारंभिक लक्षण अगर हम जानना चाहें तो कैसे पता करेंगे?
0: भाई फिस्टुला का सबसे मेन लक्षण है कि मतलब अपने गुदमार्ग के आसपास कोई फुंसी हुई फुंसी मिलेगी आपको उभरी हुई,
2: जी
0: जैसे जब अपना फोड़ा फुंसी होते हैं उस तो रेक्टम सरफेस एरिया में
2: जी
0: उसके उसमें होता है। हमारे जो आयुर्वेद में क्या भगंदर 5 प्रकार के होते हैं,
2: जी
0: 200 के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो क्या अलग अलग, जैसे वो तो क्या मतलब प्रैक्टिकली अपन चेक करने पर ही पता कर पाएंगे, लेकिन
2: जी
0: सिम्टोमेटिक के आधार पर अपन बता सकते हैं कि भाई आपको फिस्टुला है क्या। और जैसे पाइल्स का है, तो पाइल्स क्या है कि एक मांस का जो वो फूल जाता है अपन जैसे और करेंगे तो उसके
2: बिल्कुल
0: वहाँ
2: फूल
0: फूल के
2: सकते
0: वो दो तरह से इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है।
2: जी
0: अब उसके अंदर जैसे अपन पहचान करें कि भाई ब्लड आ रहा है, तो जैसे अगर बूंद बूंद अगर ब्लड गिर रहा है आपका फ्रेश होने के बाद में
2: जी
0: या पहले जैसे भी है, तो अगर पिचकारी के रूप में ब्लड आ रहा है
2: जी
0: तो आपका मे बी पॉसिबल पाइल्स है।
2: जी
0: और अगर मल के साथ लग के आ रहा है
2: जी
0: तो फिर फिसर है,
2: जी
0: फिसर उसको परिकृतिका कहते हैं। तो एनल जो अपनी जो प्रवाहिणी हमारे स्मरण मतलब 3 स्फिंक्टर होते हैं हमारे आयुर्वेद भाषा में, PVS कहते हैं, प्रवाहिणी स्मरणीय और वो वाले, इस तरह से अंदर से बाहर की ओर, तो उसमें उसमें क्या कट लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना स्टूल हार्ड, स्टूल उसका रीजन है। अब वो स्टूल हार्ड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या रप्चर हो जाएगी,
2: जी
0: और इसमें हीलिंग का जो, क्योंकि एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ है डेली अपने को रोज सोच जाना ही है
2: जी
0: तो जाना है, तो उसको हीलिंग की थोड़ी सी क्या और अलग पार्ट की अपेक्षा यहाँ पे हीलिंग में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसके लिए जो उसे हमारे जैत्यादि तेल होता है
2: जी
0: उसका पीछू लगाए, या उसको कैथेटर के रूप में जो एनिमल लगाते हैं ना अपन जनरली, वैसे मैं पहले गर्म पानी में थोड़ा बैठे उसके बाद में उसका 2 से 3 ml के लगभग इंटरनली ऑयलेशन करें। उसे
2: जी
0: इंटरनली ऑयलेशन होगा तो जो इंटरनल पार्ट है भाई अपन बाहर से अगर लगाए तो एक्सटर्नल हो गया, लेकिन जब
2: जी
0: तक इंटरनली चीज़ नहीं लाएगी जब तक उसकी हीलिंग नहीं होगी।
2: जी कब्ज भी किसका कारण मान सकते हैं डॉक्टर
0: कब्ज तो
2: साहब?
0: मुख्य कारण ही मैंने शुरू में बताया ना, रोग सर्वे मंदाग्नि, सभी
2: जी
0: रोगों का मूल कारण मंदाग्नि, और मंदाग्नि से कब्ज क्यों उत्पन्न होता है।
2: जी तो पेट में कब्ज वगैरह नहीं बनी रहे तो इसके लिए किस तरीके का खान पान जो है व्यक्ति को रखना चाहिए?
0: भाई उसके लिए आपको देखो सुबह उठते हमारे उसमें सबसे बताया कि उष्ण जल पीना चाहिए। उष्ण जल एक सबसे अच्छा लग्जेटिव है,
2: गर्म
0: गुनगुना
2: पानी जो गुनगुना पानी जो होता
0: पानी
2: है।
0: है।
2: जी
0: तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की क्या कोष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, कोष्ठ से मतलब पेट की जो प्रकृति कहते हैं ना इसकी ताज, मतलब जैसे कोई को तो गर्म पानी से फ्रेश होने चल जाता है,
2: जी
0: कोई को चूर्ण के बाद भी नहीं होता है, कोई को इतना एनिमा तो जब भी पेट साफ नहीं होता है,
2: जी
0: तो क्या मतलब उनके कोष्ठ है जैसे मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ।
2: जी
0: तो क्या है कि अगर आप डेली गुनगुना पानी पियोगे वो कोई को तो आपका कोष्ठ सॉफ्ट रहेगा
2: जी
0: तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। एक लेट खाना नहीं खाए,
2: जी
0: शाम का हल्का खाना खाए, जैसे अपने को ऐसा दो अपनी जो प्रकृति के अनुसार, जैसे अपना वो शरीर अपने आप ही बता देता है कि मेरे को क्या चीज़ सूटेबल,
2: जी
0: उसके बाद भी अगर अपन उसको अवॉइड करेंगे तो फिर वो रोग उत्पन्न होएगा।
2: जी
0: तो लाइट खाना खाए हल्का, और जैसे हरड़ा है अपना जो सो छोटी हरड़ा होती है उसको सेक करके उसका

0: सोडियम बना के रात को गुनगुने पानी से ले, चाहो तो उसमें फाइबर के रूप में आप इसबगोल मिला सकते हो, इसबगोल बेस्ट है।
1: जी
0: और हरडा क्या है कि ऐसी चीज़ है, एक छोटी हरडा मतलब अनुलोमक है, व्यवस्थापक है ये, क्या अपने छोटे से लेकर बड़े बच्चों
1: जी
0: तक को अपन बाल हरडा आती है। छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको भी जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फ्लेटेंस हो जाते हैं, तो उसको भी अपन बाल हरडा को दिया जाता है।
1: जी
0: तो हरडा बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, मतलब शरीर के लिए हर किसी को, मतलब इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है
1: जी
0: उसको यूज लेने का।
1: डॉक्टर साहब, जैसे एलोपैथी में तो जो है वो ऑपरेशन द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, आयुर्वेद में फिस्टुला का इलाज किस तरह से किया जाता है, या किस तरीके की जांच के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं कि भाई इसको वाकई में फिस्टुला की शिकायत हुई है?
0: भाई हमारे आयुर्वेद में भी सर्जरी का विधान बताया गया है,
1: जी
0: तो हमारे आयुर्वेद में सार सूत्र चिकित्सा एक पद्धति होती है, उसके अंदर जैसे पायल्स, फिस्टूला, फिसर तीनों का सार सूत्र से चिकित्सा होती है। फिस्टूला का जैसे जो ट्रैक बन जाता है, उसके ट्रैक को जैसे कई बार ब्लाइंड भी होता है ट्रैक अंदर की, तो मतलब क्या ओपन नहीं होता है, तो उसको चेक करके उसको सॉफ्ट जैसे अपने उसकी सलाखा होती है, जैसे चांदी की सलाखा होती है सिल्वर, उससे उसके द्वारा उसको ट्रैक को क्लियर किया जाता है। उसके बाद में उसमें धागा डालकर जो मेडिकेटेड थ्रेड होता है,
1: जी
0: तो उसका मतलब खासियत ये होती है कि जो खराब टिश्यू होते हैं उनको तो वो काट देता है,
1: जी
0: और उसके पीछे जो सॉफ्ट टिश्यू वो अपने आप मतलब उसकी हीलिंग कैपेसिटी फास्ट होती है। तो धीरे धीरे धीरे धीरे पेशेंट, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है,
1: जी
0: इसमें अगर पेशेंट सहनशील हो तो उसके अच्छा रिजल्ट है, रिकरेंस के मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑपरेशन दोनों में अपने अपने जगह सब सही है, बट
1: जी
0: लेकिन उसमें क्या, जैसे आपने मेडोन में लिया तो उसके लिए आपको हीलिंग के लिए से मान लो सर्जरी हुई तो आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी,
1: जी
0: एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर वापस जैसे, क्योंकि ये क्या है मर्म स्थान है,
1: जी
0: रेक्टम के एनस क्या मर्म स्थान है, वाइटल पार्ट होता है,
1: जी
0: सॉफ्ट टिश्यू होता है, इनमें क्या है कि हल्का सा वो तो दूसरी और दूसरा ट्रैक बन जाएगा,
1: जी
0: तो इसमें धागे से उसमें क्या होगा कि इस तरह कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि
1: जी
0: उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया जाती, नेचुरली आपका डेली काम, आपका दिनचर्या कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, आप अपना काम कर सकते हो,
1: जी
0: और जितना आप इसमें चलोगे फिरोगे उतना ज़्यादा फास्ट रिकवर होगा, क्योंकि बॉडी एक्ट मतलब मूवमेंट होगा, तो वो जो जितना उसमें धागा डाल के उसको ट्रैक को जो बांधा है ना, तो उतना कट होगा वो।
1: जी
0: और इसमें जितना मतलब सप्ताह में जैसे 2 बार तो धागा चेंज होना ही चाहिए, जितना
1: अच्छा
0: जल्दी धागा, क्योंकि जो लूज हो जाएगा धागा तो फिर वो काम नहीं कर, फिर लूज हो जाए फिर 3 दिन बाद फिर वापस उसको चेंज करा लीजिए थ्रेड को। ये क्या सार का बना हुआ धागा होता है,
1: जी
0: मसनवी सार, अपामार सार, हल्दी, ये इसको क्या है 7 से 21 बार इसकी भावना देके उसको धागे को तैयार किया जाता है,
1: जी
0: तो उस धागे की क्वालिटी धागे का ही मतलब वो है उसके अंदर, इसलिए उसको सार सूत्र बोला है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो धागा जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उससे हम उसको बांध देते हैं,
0: यस
1: तो ये मतलब कितने समय तक ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, या मतलब हर 7 दिन
0: जब तक
1: पंद्रह
0: वो
1: दिन
0: ट्रैक पूरा ओपन नहीं हो जाए,
1: जी
0: वो क्या है उस पर डिपेंड करता है कि सीवीटी ट्रैक कितना गहरा है, क्या चीज़ है, वो तो मतलब उसको चेक करने पर ही पता लग पाता है, और
1: जी
0: फिर क्या है कौन से उस पर मतलब एंगल पे है, जैसे क्लॉक के आधार पर अपन उसको बताते हैं, जैसे 6 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock, एक घड़ी के अपन उसके अकॉर्डिंग उसकी मतलब डायग्नोस किया जाता है,
1: जी
0: तो उस मासेर और एनस से उसको काट कर अपने आप ही वो भरता हुआ जाता है, ओपन हो जाएगा जो ट्रैक का जो वर्ण है, नाड़ी वर्ण है वो एक तरह से उसका ओपन हो जाएगा, तो वो अपने आप पीछे से जो टिश्यू हीलिंग करते हुए आएंगे तो रिकरेंस की सुविधा मतलब चांसेस नहीं होते उसके अंदर।
1: जी वो जो गूदा जो बाहर आ जाता है, लटक जाता है, या मात्रा जब इसकी बढ़ जाती है?
0: वो गुदा बाहर आना वो तो प्रोलेप्स है, वो
1: जी
0: रेक्टम प्रोलेप्स है भाई, वो रेक्टम प्रोलेप्स है, वो जो स्पिंक्टर मैंने बताया ना, जो हमारे जो वो स्पिंक्टर होते हैं अपने, तो वो क्या है जैसे लास्ट का जो कई बार क्या जो अपने उसमें क्या होता है ना, माइंड के अकॉर्डिंग उसको अपन कंट्रोल रखते हैं भाई, जैसे लगता है कि भाई फ्रेश होने जा रहा है, तो अपन फ्रेश उसमें बैठेंगे, जब जाके माइंड उसको संकेत देगा कि भाई फ्रेश होना, जब भी फ्रेश हो,
1: जी
0: तो उसमें जो लास्ट वाला स्पिंक्टर, तो वो क्या है कि माइंड का कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए वो जो रेक्टम का पार्ट है ना वो नीचे की ओर, जो अपन फ्रेश होने के लिए बैठेंगे तो वो बाहर आने लग जाता है।
1: जी
0: तो इसमें क्या संकोचक औषधि का जैसे हमारे चांगेरी ग्रंथ आता है, चांगेरी ग्रंथ का पीछू लगा कर उस पर लगाया जाता है, और इसमें लग्जिट्यू जैसे दस्त बिल्कुल पतले आए
1: जी
0: वो ऐसी दो औषधियाँ दी जाती है, जैसे एरंड तेल है, अपन खाने पीने में भी अपन देखे तो अपन जैसे अगर घर का घी है
1: जी
0: तो आप दूध में शाम को ही डाल के पी सकते हो, सुबह इसमें क्या दही नहीं खाना,
1: जी
0: दही अपन जनरली आदमी सोचते हैं कि भाई दही से फायदा होगा, दही से नुकसान होगा, क्योंकि
1: जी
0: दही का अभिसंधि होता है, मल को बांधने वाला होता है, जितने भी आपने देखा होगा, तो जैसे अपने दस्त लग जाते हैं तो जो लैक्टिड बेसिलस जो बैक्टीरिया स्पोरोलाइट के जो पाउच होते हैं उनमें भी वो दही के बैक्टीरिया होता है एक्चुअली,
1: जी
0: तो अपन एक्चुअली उसको

0: क्योंकि उसको रोकने के लिए दिया जाए, अपने को रोकना नहीं है,
1: जी
0: अपने को दस्ता और लग्जिटिव चीज़ लेनी है। उसके जो अलावा जैसे छाछ है, छाछ इसमें अमृत बताया, तक्र
1: छाछ का सेवन आपको करना
0: छाछ का
1: चाहिए
0: सेवन,
1: जी।
0: छाछ का मतलब यह है कि उसमें से दही के बाद में घी निकला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप घी दही को फेंट लो, दही को फेंट लो तो भी उसके गुण ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अब उसमें से आप जब मक्खन मट्ठा मतलब उसको मक्खन को निकाल लोगे, उसके बाद में जीरा और काला नमक डाल के
1: जी
0: भोजन के साथ सुबह छाछ लीजिए, शाम को एक गिलास दूध लीजिए, उसमें घी डाल के लीजिए, कभी आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।
1: जी
0: ये हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, आप मैं चाहूँगा कि श्रोताओं से सभी इसको अपनी दिनचर्या का पार्ट में ले,
1: जी
0: तो कभी इस तरह के एनोरेक्टल डिजीजन से मतलब
1: मतलब छाछ का उपयोग तो आपको
0: छाछ
1: करते रहना चाहिए
0: बेस्ट
1: ताकि
0: आप
1: पेट भी
0: रखें,
1: साफ रहता है और मोशन वगैरह सही
0: मोशन
1: हो
0: भी
1: जाते
0: साफ
1: हैं,
0: रहेगा।
1: क्योंकि
0: भाई
1: अधिकतर
0: अग्नि
1: लोग
0: दीपक दीपन है, अग्नि को दीप्त करती है छाछ है। और इसके रूप में जैसे बड़ी हाई जो मेट्रो सिटीज है जैसे उनमें कई बार जैसे छाछ वाछ नहीं मिलती है, तो हमारे मेडिसिन आती है तक्रारिस्ट के नाम से,
1: जी
0: इस मतलब फार्मेसी ने उस नाम से मेडिसिन भी बनाई हुई है।
1: जी एक श्रोता शायद हमारे साथ हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: हाँ कौन सा बोल रहे हैं
2: वैभव बोल रहा हूँ जालौर से।
1: जी, प्रश्न कीजिए डॉक्टर साहब से।
2: जी नमस्कार सर,
0: नमस्ते सर।
2: प्रश्न यह है सर कि इसका फिस्टुला का मेन कारण कब्ज है,
0: यस
2: तो इसकी वजह से और क्या क्या हमारे बीमारियां और हो सकती है फिस्टुला के अलावा,
0: फिस्टुला
2: और
0: वाला
2: इससे
0: सर
2: हमें
0: जैसे पाइल्स है वो भी उसी का ही कारण है, जो एनोरेक्टल डिजीज है ना, जो गुदमार के अंदर जो चीज़ें होती है भाई, कब्ज से कब्ज किसको कहेंगे, जो अपन पेट साफ नहीं होना है कब्ज, या आम भाषा में अगर उसको समझना चाहे तो उसके अंदर मतलब वैसे जैसे पाइल्स होगी, ज़्यादा जोर लगाए तो पाइल्स के रूप में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिसर हो गया परिकृति का उसको कहते हैं, जिस फिसर फिसर होता है जलन रहती है, प्रेस होने के बाद में
2: हाँ
0: आधा घंटे तक जलन रहती है, तो वो फिसर के रूप में उसको तो वो क्या कट लग जाता है एनस के अंदर जो इस सॉफ्ट टिश्यू है, तो वो अपन डिस्टल पास होएगा। एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे अपन आज जो वेस्टर्न जो सीटें यूज़ लेते हैं ना,
2: जी साहब,
0: वो थोड़ा सा उसको करके अगर इंडियन उसको ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अपने जो पेट के अपने जैसे उकड़ू बैठते हैं ना, उकड़ू टुकड़ू बैठेंगे तो उसके अंदर अपना क्या पेट पूरा क्लियर होगा, जो
1: जी
0: रेक्टम जो
1: सर,
0: मलाशय का जो पार्ट है उसके अंदर जो अपने जो कालपल मसल होती है इस पर प्रेशर डलता है, प्रेशर डलता है तो पूरा फ्लस आउट हो जाता है, और अपन उसके अंदर बैठे तो उसमें क्या इधर जोर नहीं लग पाता है, और अपन फिर उसके प्रेस होने के लिए जोर लगाते हैं ना, तो फिर ये एनोरेक्टल डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं।
2: जी। और डॉक्टर साहब, अपन फ्रेश होने जाते हैं डेली, तो
0: यस सर,
2: फ्रेश एक बार होना जरूरी आवश्यक रहता है या दो बार होना रहता है, या इसकी क्या एक
0: भाई
2: वो है?
0: फ्रेश होने का मतलब यही, जैसे अपन ने जैसे होता है ना, अपन उसको समझना चाहे कि जैसे छत पे गए, छत पे से अपने रस्सी डाली दम देने नीचे आ गई, तो उसका यही, ऐसा नहीं कि आप बाथरूम के अंदर बैठ के अखबार ही पढ़ रहे हो
1: जी
0: फ्रेश होने गए, तो वो फ्रेश होना वो आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन के संकेत वो है आपका, आप उसको अपने आप यूँ नहीं कहेंगे कि भाई जैसे हम पूछे कि भाई आप कॉन्स्टिपेशन, नहीं पेट तो साफ रहता है अमूमन आप साफ हो जाता है, तो उसको अपन कॉन्स्टिपेशन ही मानेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप फाइबर डाइट को अपने खाने में ऐड कीजिए, जैसे खाने में सलाद हुई है, और जैसे मैं तो मानूंगा जो आज तारीख में सबसे अच्छा फाइबर का वो है सोर्स है भोजन का
1: जी
0: अपना अन्नों के अंदर, अन्न के अंदर, तो जो को
2: हाँ
0: आप
2: सर,
0: खाने में ऐड कीजिए, जो मिक्स आटा होता है ना, उधर आजकल जो इस बीमारी उसे क्या पेट लाइफ स्टाइल जैसे डायबिटीज ये भी बढ़ रही है, तो उसमें भी उसको हमारा प्रधान आहार बताया गया जो को, और फाइबर तो है पूरा
2: जी
0: गणित
2: मैं
0: सर
2: सो
0: इसमें फाइबर के ऊपर है,
2: जी
0: फाइबर
2: जी
0: डाइट लोगे तो सॉफ्ट रहेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। एक अपन उदाहरण के तौर पर आप समझना, जैसे 100 ग्राम आप आटा लीजिए, और 100 ग्राम में आप जैसे चावल है 100 ग्राम चावल ले लीजिए, चावल मोटा अनाज एक तरह से,
2: हाँ
0: और
2: सर,
0: आटा बारीक है, तो आप 100 ग्राम आटे की रोटी तो आप खा जाओ, लेकिन 100 ग्राम चावल को आप बनाओगे तो नहीं खाओ, क्योंकि 100 ग्राम चावल ने कुकर भर दिया पूरा,
1: जी
2: हाँ सर,
0: तो उसने क्या अपना सरफेस एरिया बढ़ा दिया, मेरा कहने मतलब मैं समझने की कोशिश कीजिए, उसको सरफेस एरिया बढ़ा दिया, मतलब फाइबर है वो, तो अपनों जो एयर के अंदर से पैन में जो स्याही छोड़ देता है ना, अपने जो नल की स्याही छोड़ देती है उसमें एयर आ जाती है,
2: जी साहब,
0: तो उसमें क्या होता है जैसे स्याही जहाँ तक पैन चल रहा है वहाँ तक तो चलेगा, फिर एयर आ गई, फिर बाद
1: जी
0: में अपन उसको झटके देंगे मतलब जिस वहाँ तक फ्रेश हो लिया अपन, फिर लगता है यार 10 मिनट बाद फिर फ्रेश होकर आता हूँ मैं, तो वो क्या है कि एयर, अब उस एयर के गैप को आपको जो फाइबर आप लोगे खाने में वही उसको कवर करेगा।
2: और साहब ये अपन गेहूं का आटा खाते हैं साहब,
0: यस
2: अब 100 ग्राम आटा तो दिन भर में अपन खाते ही हैं,
0: हाँ खाते ही हैं, सही है,
2: तो ये आटा भी क्या बदल बदल के खाना चाहिए, अनाज भी बदल बदल के खाना चाहिए, क्या
0: भाई
2: करना
0: अगर
2: चाहिए, क्या सही है
0: अपन
2: साहब?
0: उसको खा सकते हैं सुविधा अपना अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मतलब लेना चाहिए, आज जो मोटा अनाज के रूप में जो मिक्स आटे हैं ना उनको अपने खाना चाहिए, जैसे मैं तो कहूँगा जो आप उसको ज़रूर ऐड करो खाने के अंदर,

0: है जो है वो खाने में, आज गर्मियों में जो कसतो में थोड़ी देर पहले बताया भी था एक श्रोता मेरे
1: जी
0: को
1: जी
0: उनको, तो उसको मेरा तो ये है कि मेरा खुद का मतलब अनुभव है ये चीज़।
1: जी
0: हाँ, जो का मतलब बार बार मेरा एक चीज़ बार बार आ रही है
1: हाँ
0: मौसम को
1: हाँ
0: देखते हुए,
1: हाँ
0: उसके हिसाब से जो का इतना अच्छा रिजल्ट है खाने में, तासीर में, हर तरह से फाइबर है, कोष्ठ अग्निदीपक है, मतलब सब चीज़ है वो खाना। एक जो टाइम का है उसका भी इशू होता है, कैसे अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कई बार कैसे मान लो कोई दुकान कर रहे हैं या कोई नाइट जॉब है तो उसमें क्या लेट खाना खाते हैं, वो भी
1: जी
0: एक इसका रीज़न है। खाना भी सर लाइट, आप टाइम पे अपना खाने का फिक्स रखो, खाने का भाई इतने बजे खाना तो इतने बजे खाना ही है, फिर लेट खाना खाएंगे आप। मैं भी जैसे आप भी एक्स वाई जेड कोई भी अपना, आप जैसे कोई फंक्शन में गए या कहीं नाइट सफ़र करा, ट्रेवल किया, उस दिन आप कॉन्स्टिपेशन होना है
1: जी
0: तो आप उस टाइम पे अपना
1: ये
0: लग
1: बात बहुत होती है साहब। ट्रेवल पर कहीं से आप बाहर से आ रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो
0: होना
1: जाता
0: है,
1: है।
0: वो होएगा, वो मुझे भी होगा तो आपको, तो उसके आपका अल्टरनेटिव है कि आप अपना लग्जिटिव से मतलब है कि ऐसा कोई जैसे हरडा बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, छोटी हरडा है उसका पाउडर अपने उसमें पॉकेट में रखो, पर्स में या उसमें बैग में, तो उसको जहाँ भी है तो गुनगुना पानी अमूमन लगभग सब जगह अवेलेबल हो जाता है,
1: जी
0: तो अपन जैसे खाना खाया उसके बाद में एक चम्मच लिया गर्म पानी से ले लिया, तो सुबह अपने के पेट दिक्कत नहीं होगी। पेट में कभी भी ये नहीं सोचना कि आज साफ नहीं है तो कोई नहीं, कल हो जाएगा,
1: जी
0: तो कल वो चीज़ बढ़नी है, कम नहीं होगी भाई
1: और
0: इसमें।
1: साहब ये गुनगुना पानी अपन पी रहे, कोविड के बाद से तो खूब पी रहे हैं कोविड गुनगुना पानी। और ऐसे कई उपाय करते हैं जिससे कि कब्ज ना हो, तो क्या बिना उपायों के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब्ज ना हो?
0: उपाय कोई उपाय है तो दिनचर्या सर, उपाय थोड़ी भाई, दिनचर्या गर्म पानी पीना
1: क्या
0: चाहिए
1: दिनचर्या हमारी ऐसी बनावा जो
0: भाई, दिनचर्या एक तो देखो सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में जो बताया है ना उठने का प्रावधान है, मतलब उसको आप कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखना, जितना जल्दी उठोगे आपको दिनचर्या में क्या टाइम मिल जाएगा,
1: जी
0: आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आप रिलैक्स रहोगे, आप हर तरह से उसको मतलब अपने लिए शरीर के लिए टाइम दे पाओ तो मतलब स्ट्रेस नहीं रहेगा हर चीज़ का। आप जैसे मान लो सुबह 6 बजे उठते थे और दिन आप 5 बजे उठे तो आपको 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, तो अपने आप ही वो चीज़, अब जल्दी आप उठ के देखो आपको पेट साफ रहेगा, जितना लेट उठोगे उतना कॉन्स्टिपेशन मिलेगा
1: जी
0: भाई,
1: साहब। और एक
0: आहार
1: अगर
0: निंद्रा।
1: बादशाह के ये ऑपरेशन कराए तो फिस्टुला को, तो
0: यस
1: अब भविष्य में तो उनके कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी साहब?
0: भाई देखो सर, ऑपरेशन करा लिया तो ये नहीं है कि भाई होगा ही नहीं, मतलब ये अपना खान पान है, मैंने कहा ना आपको जैसे खाने का पीने मतलब उसका कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना ही है, वो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे आंतों की गति भी कम हो जाती है
1: जी
0: भाई, जैसे होता है ना आंतों की गति कम हो जाती है तो अपनों के जैसे टॉनिक भी साथ में लेनी चाहिए मेडिसिन, जैसे अश्वगंधा हुआ, ये जो नर्व टॉनिक होती है तो क्या है कि आंतों की गतियों को नेचुरली बढ़ाते हैं, अपने को ऐसे कोई त्रिभुज विभेचक नहीं लेना जैसे कायम चूर्ण, मतलब नाम तो मैं छोड़ नहीं ले
1: जी
0: पाऊंगा बट, लेकिन उसमें जिसमें स्नायु होती है ना उसके अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा नहीं हो,
1: जी
0: अगर उसकी मात्रा है तो उसमें आप उसमें इस सब गोल मिला के उसको बैलेंस कर सकते हो,
1: जी साहब
0: इस सब गोल को।
1: धन्यवाद,
0: ठीक है सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। शायद एक श्रोता और जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
2: हाँ जी हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार,
2: नमस्कार जी,
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं रघुराज सिंह झालावाड़ा से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो डॉक्टर साहब ने भी तकरा से पेट साफ के लिए दवा का नाम बताया अभी, तो
0: यस सर,
2: ये कैसे लेनी है और कहाँ मिलेगी ये? अच्छा
0: ये सर आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलती है तकरारिष्ट भाई, एक्चुअली उसका रीज़न ये, एक तकरारिष्ट लगभग सब जगह अपने, एक्चुअली मैंने आपको एक चीज़ पहले उसमें बताई थी भाई, तकर मतलब छाछ को कहते हैं अपन, और
1: अच्छा
0: तकरारिष्ट क्या होता है जैसे होने को तो अपने ये जो अपने जो डिस्पेंसरियों के बाहर या जो भी आयुर्वेदिक स्टोर होती है आप उन पे
1: जी
0: ट्राई कर लीजिए, उन पे मिल जाती है, छाछ की बनी हुई होती है वो भाई, अपने क्या इजीली अगर छाछ मिलती है तो अपन को छाछ को लेना चाहिए काम में
1: हाँ
0: भाई, जो
1: ना
0: मेट्रो सिटी में जहाँ मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर आप उसको तकरा सिरप का यूज लें,
1: तो ये लिक्विड में होती है, बोतल में
0: लिक
1: आती होगी?
0: हाँ बोटल अपने जैसे अभ्यारिष्ट कुमार या सब आती है सेम ही, उसी के लिए तकरारिष्ट है भाई, वो तकरारिष्ट ये आपको डेली कहीं पे अरेंज नहीं करनी पड़ेगी, साथ कहीं पे सफर हुए तो अपने बोतल रखी बैग में, 20 ml
1: हाँ
0: दवाई, 20 ml पानी मिला के पी लिया,
1: जी
2: अच्छा 20 ml, 30 ml, 20 ml पानी मिला के पीना है ना?
0: इक्वल वाटर जितना जो और आसावरिष्ट की जो मात्रा है 20 से 30 ml के लगभग,
2: अच्छा,
0: एक छोटे कप में जितनी दवाई डाली उतना ही पानी मिला लीजिए उसमें,
2: ये कब लेनी है, सुबह या
0: खाने के
2: शाम
0: बाद
2: को?
0: भोजन के बाद दोनों टाइम लो कोई दिक्कत नहीं।
2: ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर
0: ठीक
2: साहब,
0: सर, थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, फिस्टुला कारण लक्षण और इसके जो आयुर्वेदिक उपचार के बारे में आप हमें बता रहे हैं कि भाई किस तरह

0: तरीके से हम अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं ताकि इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। हम इस अंतराल के बाद पुनः श्रोताओं से मुखातिब होंगे।
1: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
2: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
1: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
2: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
1: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
2: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
0: आपकी सेहत कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोताओं को बता दें, हमारा आज का विषय है फिस्टूला यानी कि भगंदर, जिसे हम जानते हैं, कारण, लक्षण और आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रामकेश मीणा, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, हमारे साथ में बैठे हुए हैं और आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिस्टूला को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, समय पर अगर इसका इलाज ना कराएं तो आगे किस तरीके का खतरा हो सकता है या और कौन से बीमारी को ये निमंत्रण दे सकता है?
3: मैं समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो मतलब आगे जाके जैसे एनोरेक्टल डिजीज़ है तो वो कोई भी चीज़, जैसे वह एक तरफ फोड़ा, अगर उसको अपन जनरली अगर बाहर भी होगा उसको साफ़ नहीं करेंगे तो वो अंदर इन्फेक्शन पैदा कर लेता है। इन्फेक्शन संक्रमण का खतरा होता है, तो वो जो टिश्यू है उसमें मतलब आगे जाके जो आजकल जो कैंसर जो मोस्ट कॉमन आज महामारी का रूप ले रही है, एक तरह से उसके और बढ़ने के चांसेज होते हैं।
0: जी,
3: तो मेरा तो श्रोताओं से निवेदन है कि इस चीज मतलब बीमारी में कभी भी कतई मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है
0: जी।
3: ये बिल्कुल 100% से ठीक होने वाली बीमारी है और ये अपने हार विहार और उसी के अकॉर्डिंग भी ठीक हो ऐसा
0: जी।
3: तो इसको अगर अपन लापरवाही करेंगे तो चीज बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आप अपने
0: एक बार जिसे अपन ने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया या व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो गया, क्या दोबारा उसको फिर से ये शिकायत हो सकती है?
3: अगर लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहा भाई, जैसे मान लो एक बार फिस्टूला हो गया, ऑपरेशन करा लिया, वही एक एक महीने ठीक है, मैं तो बिल्कुल डन हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं उसके बाद में फिर वो बाटिया वो खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, मतलब एक्चुअली कोई एक्स वाई जेड जो भी हैवी डाइट
0: जी।
3: अब उसको पच तो उसको दाल ही नहीं पच रही और खाने में आप हैवी खाओगे तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन, अब मैंने बताया जैसे ऐसा नहीं कि भाई आज पेट साफ नहीं हुआ कोई कोई बात नहीं कल हो जाएगा, वो नहीं करना है।
0: एक श्रोता साथ में, हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार, आबिद हुसैन
0: जी। आबिद जी, प्रश्न कीजिए डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं?
4: डॉक्टर साहब, मैं जो आप बीमार बता रहे हो ये बीमारी, तो इसके बारे में पेशाब घरों में और कई जगह पर्ची चिपके हुए देखता हूँ कि ये इसका इलाज बवासीर खूनी मस्तों का इलाज किया जाता है, नंबर ये लिखे हुए हैं, तीन साल ये है और भी सेक्सुअल बीमारियों के वगैरह जिनके चिपके रहते हैं, ये
3: भाई इसके लिए। नमस्ते सर, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा अपने ऑथराइज सेंटर खोले हुए हैं, औषधालय हैं हर पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, वहाँ पे डॉक्टर्स की सुविधाएं हैं। आप, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना उचित परामर्श निश्चित स्थान पर जाकर आप परामर्श लें, आपको 100% आपको फायदा मिलेगा।
4: मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा ये कि ये लोग मरीज को शायद गुमराह करते हैं और कोई शर्म से जो लोग नहीं जा पाते ना हॉस्पिटल।
3: भाई वो देखो आज जागरूकता बढ़ा है, आप वो कहा होता है जागो ग्राहक जागो, आपको खुद को जागरूक, उसके लिए अवेयरनेस खुद को अपनानी पड़ेगी। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि भाई आप जैसे सपोज करो आप रोड पे कोई भी एड लगा के बैठा हुआ है और जब आप डिस्ट्रिक्ट में हो, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल रहे हैं, यहाँ पे तीन वहाँ पे 10-10 डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ जाके जाओगे तो वो तो देखो उन्होंने अपने प्रोफेशनल बना रखे हैं। हालांकि उसके लिए हमारे मतलब सरकार द्वारा भी टीमें बना रखी, कई बार ऐसे ऐसा नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि छापामारी होती है, उनको बंद भी वो भी पकड़ा भी जाता है, लेकिन वो सबसे पहले मैं श्रोता उस निवेदन करूंगा कि इसके लिए खुद को अवेयरनेस करना पड़ेगा। आप जो भी,
4: मुझे लगता है कि गुमराह करते हैं मरीजों को, शर्म वालों को।
3: हाँ भाई, इसका मुख्य कारण यही तो है ना सर, शर्म के मारे आदमी नहीं जा पाता है, नहीं ठीक है यार एक कोने में बैठा हो तो अपन उसको जाके दिखा लेते हैं, तो ये नहीं है शर्म के, वहाँ पे भी ऐसा ये थोड़ी, वहाँ पे भी आपको,
0: वो भी डॉक्टर को तो
3: भाई वहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई ओपनली उसमें भी ऑपरेशन थिएटर,
4: शर्म की तो इलाज देना है तो शर्म तो करना ही नहीं,
3: करना ही नहीं भाई, बीमारी होगी तो शर्म करोगे तो बीमारी बढ़नी, अब शर्म आप खुद के लिए, अपन के लिए, अपन बीमार के लिए, अगर अपने इलाज नहीं लेंगे तो उसका तो
4: ठीक है।

0: ठीक सर,
1: थैंक यू,
2: धन्यवाद। कई बार लोग जो है वो जैसा कि शर्म झिझक के कारण नहीं बता पाते हैं, या कई लोग ये सोचते हैं कि हम भाई हम यहाँ दिखा देंगे तो इससे ज़्यादा ठीक हो जाएगा, या डॉक्टर के पास जाएंगे, या एलोपैथिक में अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या आयुर्वेद में करा रहे हैं, आयुर्वेदिक में जो है वो एक तरीके से जो चूर्ण वगैरह और पुड़ियाँ वगैरह ज़्यादा दी जाती हैं, तो इससे भी लोग शायद बचना चाहते हैं तो नीम हकीमों के पास पहुँच जाते हैं। एक और श्रोता शायद जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं सूरज जी बोल रहा हूँ, सरकनिया से।
2: जी सूरज जी, प्रश्न कीजिए, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैं पिस्टोला का ऑपरेशन कराना चाहता हूँ।
2: जी
3: हाँ,
0: नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हो आप?
3: सरकनिया से बोल रहा हूँ।
0: कहाँ?
2: सरखंडिया।
0: सरखंडिया,
3: हाँ सरखंडिया, सरखंडिया नहीं, सरकनिया।
2: सरकनिया है।
0: कितनी दूरी पड़ता है झालावाड़ से?
3: हाँ झालावाड़ में पड़ता है
0: भाई। देखो यहाँ पे क्या सर,
3: मैं पिस्टोला का ऑपरेशन कराना चाहता हूँ।
0: पिस्टोला है आपके?
3: हाँ सर।
0: कब चेक कराया आपने?
3: अब मैंने गए साल चेक कराया, साल भर हो गया, मैं परेशान हो गया।
0: तो आपने साल भर पहले नहीं कराया ऑपरेशन?
3: साल भर पहले बहुत बताया कि ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा, करवाया ही नहीं।
0: नहीं तो वही है ना,
3: वो कोटा भेजा था जांच करने के लिए।
0: अच्छा,
3: वो जांच की मशीन नहीं थी वहाँ पे झालावाड़ से, मेरे को कोटा गया, कोटा जाके वो जांच हुई कि।
0: अच्छा, वो सीटी स्कैन के लिए बोला था कि वो उसके वो सोनोग्राफ टाइप से वो कराई थी?
3: हाँ सर।
0: तो फिर वो क्या कहा, जो आप कोटा गए थे तो कोटा में भी अपने जैसे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वो वहाँ पे जो खुल गया है ना, वहाँ पे अंदर सारी वो है, सब सुविधाएं, वहाँ जाँच की सारी सुविधाएं, देखो संभाग स्तर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक से अधिक आपको सर्जन वो भी मिलेंगे।
3: वहाँ नहीं करवाया, नहीं यहाँ झालावाड़ आया नहीं तो उस दिन बंद था
2: जी।
0: तो आप वापिस आप जा सकते हो वहाँ के ऑपरेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ डेली, अब तो बड़ा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है वहीं पे अपने, जब दाऊदयाल जोशी हॉस्पिटल है वहाँ पे।
3: कहाँ पे?
0: वहाँ पे कोटा में।
3: अच्छा
0: हाँ, वहाँ कराओ, वहाँ एडमिट की सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे आपको सब चीज़ आपको हिसाब से, और ऑपरेशन ही कराना है सर, इसमें मेरा निवेदन है कि आप इसको फिस्टुला में ज़्यादा लंबा उसको नहीं खींचे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्या है कि अंदर से क्या नाड़ी वर्ण बन जाता है, अंदर जैसे मवाद बन जाता है, इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होगा धीरे धीरे। अब आप अगर साल भर पहले बताया, आप साल भर हो गया उस चीज़ को, अब यही तो अपने भाई ये खुद की तो अपने खुद की कमी मानेंगे ना इस चीज़ को, अब अवेयरनेस अपन उस चीज़ को अपने साल भर निकाल दिया उसको
2: जी।
3: हाँ सर,
0: तो वो बीमारी कम थोड़ी हो रही, वो तो बढ़ी रही है ना, वो अंदर कोई चीज़ मवाद ही मान लो दो दिन में पाँच दिन में अगर अपन एक फोड़े को अगर उसको उसकी सफाई वो क्लीनिंग नहीं करेंगे तो उसी में मतलब दिक्कत हो जाती है, वो तो चीज़ ऐसी, वहाँ तो वैसे सॉफ्ट टिश्यू है
2: जी।
3: अब क्या करें, कोटा जाए?
0: हाँ वहाँ चल जाइए आप, वहाँ करा हो जाए, कोई इशू नहीं है भाई। बाइक चले गया है ना, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, जैसे आप कोई एडिशनल कोई जांच, जैसे वो पहले भी जांच के लिए आपको वही वो बताया गया था, तो वो लेटेस्ट क्यों साल भर की जांच में, अब में वो जांच तो दोबारा करवानी पड़ेगी लेटेस्ट।
3: अच्छा,
0: तो वो फिर वो आपको वापस जाना पड़ेगा, तो वही है कि वहाँ पे अपन गवर्नमेंट वो है मेडिकल कॉलेज है।
3: अच्छा,
0: तो आप वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पूरे एक्सपर्ट की टीम है, सर्जनों की पूरी वो है, एचओडी डिपार्टमेंटल एक्सेस शल्य विभाग है, सर्जरी उसके अंदर आप उसको दिखाइए।
2: आयुर्वेद का सहारा भी आपने लिया है या नहीं लिया?
3: नहीं लिया आयुर्वेद का।
2: अच्छा,
0: मैं तो आयुर्वेद का एक बार या तो हॉस्पिटल आके दिखा लीजिए, अपने यहाँ पे मंगलपुरा में गाड़ी खाना में यहीं बैठता हूँ मैं भी।
3: कहाँ पे?
0: मंगलपुरा गाड़ी खाना,
2: आयुर्वेदिक, हाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चिकित्सालय है मंगलपुरा झालावाड़ में, तो आप यहाँ आकर के डॉक्टर साहब को
0: दिखा लीजिए भाई। एक बार क्या पेट वेट साफ, कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं हो रहा है, और फिर आपको क्या गर्म पानी में बैठना पड़ेगा, शिकाय करो व्हाट्सित बात है, कहीं थोड़ी सी क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, जब जाके हीलिंग उसकी रिकवर होगी।
3: अच्छा,
0: हाँ ऐसे नहीं कि आपने एक बार मेडिसिन ले ली मैं तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं, आपको बराबर से जब तक पेशेंट सहयोग खुद का वो नहीं करे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आयुर्वेदी तो देंगे, आयुर्वेद डॉक्टर तो वैसे आप पता रहो आपके सेंटर खोल रखा है सरकार।
2: भाई आपने ऑपरेशन का जिक्र किया था तो इसलिए डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आप ऑपरेशन कराएं, अगर ज़्यादा बढ़ गया हो या कम अगर होगा तब तो आयुर्वेदिक में आपका इसका ट्रीटमेंट पूरा है, तो आप कल आकर के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, आज भी मिल सकते हैं।
3: तो किधर है अस्पताल? किधर है?
0: मंगलपुरा में है सर, सत्यनारायण भगवान का जो मंदिर है ना।
3: हाँ सर,
0: उसके पीछे जो गाड़ी खाना आपने सुना हो, जो पहले अभी स्टेट टाइम से जो गाड़ी खाना कहते हैं हम उसमें, यहाँ पे
3: वो तो पूछ लूंगा मैं, मंगलपुरा यही झालावाड़ से होली साइड है
2: जी। बिल्कुल, आप झालावाड़ आएंगे वहाँ पूछ लीजिएगा कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाना है तो वो आपको जरूर पहुँचा देंगे।

0: ठीक साहब, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, हमारे जो श्रोता हैं वो काफ़ी श्रोता इससे पीड़ित हैं फिस्टुला को लेकर के, और सब अपने अपने हिसाब से जो है ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई एलोपैथी का लेता है, कोई आयुर्वेदिक का लेता है, या कोई होम्योपैथी का लेता है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इसमें जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि धागे के जरिए से हम उसको वो करते हैं, जहाँ तक जो दवाई गोली वगैरह है वो किस तरीके का ट्रीटमेंट, वो भी साथ में चलता है इसके?
2: मैं साथ तो सर दवाई तो लेनी पड़ेगी, धागा तो क्या है एक्चुअली को चीज़ वो ट्रैक बन गया उसको कटआउट करने के लिए,
1: जी
2: उसको ओपन करने के लिए धागा का प्रोसेस तो हुआ है
1: जी।
2: लेकिन उसके साथ में आपको पेट तो क्लियर रखना पड़ेगा, अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वापस जो रूट बनी हुई उसके अंदर वापस फिर वो मल जाके उधर गंदगी से फिर वो वापस इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो साथ में आप रिकवर के लिए मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी साथ में
1: जी। एक और श्रोता शायद हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, नमस्कार
3: जी।
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: अमर सिंह नोदा बोल रहा हूँ।
1: आप थोड़ा सा मोबाइल अपने पास में मुँह के रखें और फिर बताएं क्या नाम है आपका। हेलो, आवाज़ सुन रहे हैं आप हमारी? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, अपनी बात हम जारी रखना चाहेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे, श्रोता हमसे जुड़े उससे पहले आयुर्वेदिक के बारे में आपसे पूछना चाह रहे थे कि भाई जो दवाइयों का ट्रीटमेंट वगैरह है उसके साथ में बिल्कुल बराबर चलता रहता है, तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है?
2: पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है
1: जी। और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको ऑपरेशन इसका हल होता है
2: भाई? जैसे ट्रैक कंप्लीट ट्रैक बन गया है तो ऑपरेशन कराना पड़े, क्योंकि ट्रैक हो गया तो अंदर से उसमें क्या है कि मल मार के बगल में से उसमें से मल बाहर आने लग जाता है, जैसे रेक्टम के पास जैसे अपने गुदा है ना, तो उसमें से नहीं होकर जो उसमें से अंदर से इंटरनल ट्रैक बन जाता है
1: जी,
2: तो उसमें होके मल बाहर आने लग जाएगा और फिर जैसे अंदर मतलब फुंसी के रूप में वो अंदर मवाद पैदा हो जाएगी, तो ऐसे ही नहीं पेन होता है
1: जी,
2: झपके लगते हैं दर्द होता है, तो उसको वो जो ट्रैक को धागे द्वारा ट्रैक को ओपन किया जाता है, ओपन करके पीछे से हीलिंग होती हुई आ जाती है और नेचुरल स्किन के द्वारा उसको ऐसे लगता नहीं बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी रिकरेंस होने के चांसेस नहीं होते इसमें। एक्चुअली क्या कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ती, उसमें गर्म पानी में बैठो, इसमें ड्रेसिंग का मेन रोल है
1: जी।
2: पिस्टुला ऑपरेशन के बाद में आपको ड्रेसिंग साफ सफाई हाइजीन का मेन ध्यान रखना है, डेली फ्रेश होने के बाद में गुनगुने पानी में बैठना है, कैथेटर से उससे जो भी जो उसका जो ड्रेसिंग है उससे तेल लगाना है, बीटाडीन जो लिक्विड उसके उसमें सेल करना है
1: जी। हेलो,
4: हाँ जी, हेलो सर।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
4: जी मैं धनराज बोल रहा हूँ, रातिया डूंगरी बक्काने के पास से।
1: जी प्रश्न कीजिए, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं?
4: जी सर समस्या तो कुछ नहीं है पर दस से टाइट आती है तो उसमें ताकत लगाना पड़ता है, क्या करें?
2: कम है क्या सर? यही तो समस्या है मेन, दस्त टाइट नहीं आना, मैंने आपको शुरू में यही चीज बताई थी भाई, अपने जो दस्त टाइट आएंगे ना तो लेटिंग टाइट आएगी तो फिर वो स्किन को रप्चर कर देगी, तो अपने को खाने में जैसे क्या सॉफ्ट लग्जेटिव लेना है
1: जी।
2: सॉफ्ट लग्जेटिव क्या गाँव में से रहते हो ना सर, छाछ तो मिल सकती है अपने वहाँ?
4: मिलती है ना सर, घर पे होती है।
2: डेली छाछ खाने के साथ में सुबह एक गिलास छाछ, जीरा, काला नमक डाल के उसके अंदर
4: जी जी जी,
2: एक तो वो लेना है, और शाम के टाइम पे दूध होता है तो शाम को एक गिलास दूध में एक चम्मच घी डाल के लो घर का।
4: अच्छा जी।
2: उसके ऊपर गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, चाय वाय ये कोशिश करो तो बंद कर,
4: हल्का सा गरम करके,
2: हाँ गरम करके, गरम गरम से दूध में घी डाल के पी लो, उससे क्या अंदर आंतों में सनेहन होएगा, और फिर ज्यादा अगर ऐसा लगता है तो एक बार एरंड तेल आता है कैस्टर ऑयल, तो सबसे बेस्ट है कि 10 ml एक गिलास में दो ढक्कन डाल के उसको पी लो, तो आंतों के अंदर सनेहन हो जाएगा तो मल फिसल के बाहर आ जाएगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए।
1: जी सर। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के लगभग अंत में हम चल रहे हैं, जैसा कि हर वर्ष फिस्टुला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जागरूकता के तौर पर हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या कई श्रोता अभी भी मतलब इस विषय में जानना चाहते हैं, फिलहाल समय हो रहा है, तो आप सलाह के तौर पर हमारे श्रोताओं के क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि ये एक तो बीमारी पेट में मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने दें, और कोई भी बीमारी ऊपर शर्माए नहीं, एनोरेक्टल डिजीज आदि बीमारी वो शर्म की वजह से फैलती जा रही है, कई बार क्या होता है कि सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, शर्म आएगी, कैसे मैं दिखा पाऊँगा, तो इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस रखो, और खाने

0: में फाइबर डाइट लें
1: जी
0: और नींद का पूरा ध्यान रखें, पूरी नींद लें। जब भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, होता क्या है लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, सुबह लेट जग रहे हैं, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन समस्या होती है। तो एक अपना शेड्यूल फिक्स रखें खाने का,
1: जी
0: मतलब और सोने का, जो हर चीज़ का, उसके
1: बिल्कुल
0: पीछे ही पेट का रीज़न भाई वो, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ी पेट है। मैंने आपको, और लंबे टाइम तक जैसे कोई को जैसे लीवर टोनिक, लीवर डिजीज हो जाती है कई बार, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जैसे, तो उसकी वजह से भी वो चीज़ डेवलप हो जाएगी।
1: फाइबर युक्त
0: फाइबर
1: आपको
0: युक्त
1: भोजन।
0: भोजन ले और उकड़ू बैठे थोड़ी देर, अगर वज्रासन में बैठे खाना खाने के बाद में, तो अब प्रॉपर इस तरह से हुए।
1: डॉक्टर रामकेश मीणा, आयुर्वेदिक चिकित्सक झालावाड़, आपने फिस्टुला यानी भगंदर कारण लक्षण उपचार विषय के ऊपर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था श्री नवीन कुमार लोधा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल प्रसाद मीणा, प्रस्तुति सहायक विमल कुमार शास्त्री और सूत्रधार के रूप में मैं था आपका दोस्त लोकेश व्यास। तो अब आपकी सेहत कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य विषय सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। सवेरे के 9 बज रहे हैं, कुछ पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर, नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री कई नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। वे सबसे पहले जोधपुर पहुंचेंगे, जहां उनका विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन का कार्यक्रम है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसलमेर में 67 करोड़ रुपए की लागत से नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। जोधपुर से रेल मंत्री जालौर जाएंगे, जहां वे भुज नई दिल्ली रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन राज्य भर के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत से जिले में खुशी का माहौल है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
3: जालौर जिले को दिल्ली से सीधा रेलवे सेवा जोड़ने का अब सपना साकार हो रहा है। जिले के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ये गाड़ी प्रतिदिन जालौर जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में इसका ठहराव रहेगा। जिले वासियों के लिए सीधा मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर और दिल्ली के लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं गुजरात की ओर जाने वाले लोगों के लिए धानेरा, भीलड़ी, भरूच, गांधीधाम, अंजार के लिए यात्री गाड़ी शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर।
2: रेल मंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पाली भी जाएंगे। श्री वैष्णव कल जयपुर में रोजगार मेले में भाग लेंगे, जहां वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 5 देशों के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ये बैठक की। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के मद्देनजर और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की दृष्टि से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य में सुधार करने के तरीके

0: पर भी विचार विमर्श किया गया। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता को देशवासियों का सामूहिक दायित्व बताया है। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जन जन का आंदोलन है। श्री शर्मा कल डूंगरपुर में स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर ने स्वच्छता को जन सहभागिता का उत्सव बनाया है, इसकी वजह से आज सब जगह डूंगरपुर मॉडल की चर्चा होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक राज्य में 3 लाख के करीब व्यक्तिगत शौचालय और 5,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। वहीं 41,000 से ज्यादा ODF प्लस मॉडल विलेज बने हैं और 21 जिलों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने आज दंभोला गांव में पैदल भ्रमण कर लोगों से संवाद भी किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। इससे लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का नया आदर्श दुनिया के सामने पेश किया गया है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
1: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 5 सरहदी जिलों में 1,200 से अधिक गांवों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने सालाना 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। इसके तहत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फालौदी में रणनीतिक महत्व के 184 गांवों में विभिन्न क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं सहित कई विषयों की मौके पर ही समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहा। श्री बिरला ने शहर के सुनियोजित, सुरक्षित और सुविधाजनक विकास पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों के महत्व और पर्यावरण संतुलन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना रखी गई है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जैव विविधता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण शपथ और पौधरोपण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: जवे क्षेत्र गांवों और पहाड़ों के बीच तेंदुओं की मौजूदगी जैव विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जैव विविधता संरक्षण का महत्व बताया जाएगा। पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण, शपथ एवं संगोष्ठी आयोजित कर प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वहीं अधिक से अधिक पौधरोपण, जल संरक्षण करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की जाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके असर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर आज और कल रहने के आसार हैं। इससे दोपहर बाद कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट

0: घटा सकती है। इस बीच 46.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कल श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिन के समय जहां तपती धूप लोगों को झुलसा रही है, वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं।
1: सूरज की पहली किरण के साथ ही गर्मी अपना एहसास करवा देती है। इसका असर देर रात तक बना रहता है। लगातार भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय बाजार भी वीरान नजर आने लगे हैं। तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से दमकल की सहायता से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। इधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलने की एडवाइजरी जारी की है। शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: अधिकतर शहरों में कल दिन का पारा 40 से 44 डिग्री के बीच रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे, नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर
3: फास्ट
2: एक्सप्रेस के यात्री
3: दीप, तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना।
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का,
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के ज़माने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओं, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है।

0: ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है, विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है?
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा, दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंतजारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहा है रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेली जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आँख में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दी देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोल ने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम, बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्षी की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम, अपने अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं, वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कसम

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने। जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, शीतलता देते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ, खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन ही होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी, ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी?
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लगता है। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी

0: पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं अकेला ही सुनता बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए, क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम।

0: बहुत खुशी हो रही है मैम जी। मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
1: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
0: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
1: अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
0: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ मैं। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
1: अच्छा तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
0: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
1: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
0: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है।

0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि भाई इसको कम पिए।
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम, सोटनर का माल पिए।
0: बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल हैं कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले ग्राम सामनाकर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, रान मेवा है। वही तीसरे साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ, कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में

पंकज उधास की आवाज़ में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज़ है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ, साहिब का लिखा हुआ गाना, समीरा का कोपिकर का संगीत है।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल और नरेश परेश का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बेन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें। सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश। अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से FM 103.2 MHz पर। दिन के 12 बज रहे हैं। आई बाप को सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज आप सुनेंगे इसकी कड़ी संख्या 1290।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा

0: वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही।
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमृषि, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
0: जी,
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी,
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित

0: चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमृषि, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता यह है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: CIET NCERT presents the program.

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलीकल गांव के श्री बिक्का

0: चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।

0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए,
2: हाँ
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ
2: मैं यहाँ डालता हूँ पानी। हाँ।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
2: हाँ, ये देखो देखो देखो कितना छोटा था ना, ये पौधा कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा लग नहीं रहा जैसे हमारा शहर हो।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का समाज सेवा।
3: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
3: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनि अंकन

0: आस सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।
2: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET

0: एनसीईआरटी नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदिवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। दिन के 1 बजे चाहते हैं कुछ पल में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। इसके अपग्रेड होने से अब यात्रियों को आसानी होगी। इस मौके पर श्री वैष्णव ने भगत की कोठे स्थित वंदे भारत स्लीपर कोच वर्कशॉप के दूसरे चरण की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी VC के माध्यम से शुभारंभ किया। जोधपुर स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि देशभर में रेल संपर्क सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राजस्थान को 10,000 करोड़ से अधिक के बजट आवंटन से आने वाले समय में रेलवे में और भी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा।
2: ओवरऑल पूरे देश भर में कनेक्टिविटी जम के बढ़ रही है। अपने राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का बजट मोदी जी ने दिया है, उसके कारण बहुत सारा काम हो रहा है। जोधपुर स्टेशन भी आप देख ही रहे हो, कई नई नई रेलवे लाइनें बन रही है। अपना जैसे मारवाड़ जंक्शन से मावली 40 साल पुरानी डिमांड थी, आज उसका गेज कन्वर्जन चल रहा है। मेड़ता से पुष्कर का काम चालू हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हरिद्वार की जो डिमांड है वो भी मेरे ध्यान में है और उसके लिए भी मैं कोई ना कोई अलग व्यवस्था करूंगा और बहुत जल्दी वो व्यवस्था की।
1: श्री वैष्णव शाम को जालौर जाएंगे, जहां से वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। उनका पाली जाने का भी कार्यक्रम है। श्री वैष्णव का ये दौरा राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है। उनका कल जयपुर में रोजगार मेले में शिरकत करने का कार्यक्रम है, जहां वे युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रेल मंत्री जयपुर जंक्शन में किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। राजस्थान में रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल अगले महीने पूरा

हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गिनती कर नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए 31 जुलाई तक का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकरण में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई तरह की चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव लगातार बनाए रखा है।

0: निभाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई तरह की चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव लगातार बनाए रखा है। उन्होंने अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 63 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको पुनः सुनाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है, तो सावन कैसा होगा, लाख बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की भारत में। याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज़्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों, और अगर बता सकें तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए

भाई, जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती है, एसी कूलर से ना दिल बहलता है, रात में ना नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारत, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफ़ी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है, यहाँ वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज़्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर 1 किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत

तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं, ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो ज़रूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरे सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

0: हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। और ताज़ा हो रहा है ये संदेश, गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज़्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मज़ा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी, मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं, देखे हैं आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौत

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए, और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में था, दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरे सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है, कुदरत का नियम है।

वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको। इसलिए प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए, खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को

कल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है, कुछ भी हो। लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है, जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से ज़रूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब, श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीज़ों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1,000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान, यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफ़ी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1 2 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूँगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बाप रे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की ज़रूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीज़ें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना? गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है। मानव मन की भाव

नाव एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो ज़रा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज़, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज़ धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियाँ बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियाँ, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व तो होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियाँ तो आना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडक गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं

हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी ज़रूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की इस तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं। ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छाँव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी ख़राब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें।

गर्मी के बारे में जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओह, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयाँ आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयाँ नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे ज़मीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज़ किन की है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज़ और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहां बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज़ मौसम का क्या बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविध

जटिलता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक

0: आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा

0: 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का यह गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ यह गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना
0: जी,
1: उन लोग को नाश्ता कराना। ये
0: सर, लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है।
0: अच्छा, और आपके क्या शौक

0: रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोपनी का जो होता है वो सब बनाती हूँ। और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज।
0: जी, क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी जी जी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
0: जी
1: खाने दाल छेलियो।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: तैयार करती हैं, है ना?
1: जी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ दो लाइनें आपके लिए। हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं। तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती। ब्यूटीशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी,
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता
0: जी। हाँ बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है
1: जी।
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसपे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भी भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की, आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारे यहाँ बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है।

0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, अब कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई. लेकिन वो ज़माना, वो रेडियो का जो दौर था, वो ज़माना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था. सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे. तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
0: जी. और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरे झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है.
0: जी जी जी.
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला.
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है.
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ. सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें.
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में.
1: और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी.
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है. मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ.
0: क्या बात है.
1: सबको का, हाँ. और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा.
0: क्या बात है.
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी.
0: जी जी.
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले. इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती. बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी.
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से.
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके. और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा.
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है.
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा. और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं.

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल
1: नहीं, मैं
0: पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए, ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि

0: अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
1: जी।
0: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
1: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
0: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
1: क्या बात,
0: किनारा फिल्म से है।
1: अनु जी आपने इतना प्यारा गाना बताया, अपना नाम बताइए।
2: मैम मैं डॉली बोल रही हूँ भोपाल से।
1: डॉली जी आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
2: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
1: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
2: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं।
1: जी जी जी।
2: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की शिकंजी है या रुआबजा है या दही की लस्सी है ये पीते हैं, सब ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराही मिलती है।
1: क्या बात है। और आम का पन्ना नहीं बनाती आप?
2: मैम आम का पन्ना नहीं बनाते हैं हम, जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए अपने परिवार का नाम।
2: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
1: जी।
2: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
1: जी।
2: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
1: जी, जी।
2: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: जी, सबसे ज़्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूँगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दरक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दरक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान, सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दरक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी, लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियां मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ,
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी, न्यारी, दुलारी, हेलो सहेली। ज्ञान विज्ञान, साहित्य, समाज, उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत, कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पार
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफ़र तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझ

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपये की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपये नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने

उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूं, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया।

0: सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जातीं। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।
1: जी

बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने

माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है? सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें। कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिखकर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से FM 103.2 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: शाम ढली तो आसमान ने रंग बदलना शुरू किया। दिन की भागदौड़ ने थककर खुद को समेट लिया। हल्की सी हवा आई, जैसे बोली कान में धीरे से, थोड़ा ठहरो, जिंदगी सिर्फ दौड़ना ही नहीं, कभी कभी यूं बैठकर मुस्कुराना भी जरूरी है दोस्तों।
1: तो चलिए फिर इस शाम के नाम एक प्याला चाय उठाइए, थोड़ी बातें सपनों की करें, थोड़ा हंसे, थोड़ा दिल से सुने और दिल से सुनाएं।
0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं, सभी युवाओं और नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे दोस्तों का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी सखी, आपकी साथी और आपकी रेडियो हमसफर शिल्पा, और हमारे साथ हैं हमारी और आपकी दोस्त
0: अंतिमा।
1: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: अरे अरे अरे यार शिल्पा, ये तुम हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर स्टूडियो के चक्कर क्यों काट रही हो? क्या खो गया तुम्हारा यार? क्या ढूंढ रही हो
1: तुम? चुप रहो।
0: कोई डायमंड की अंगूठी गिरी है क्या? मुझे बताओ, मैं ढूंढने में मदद करती हूँ तुम्हारी। दोनों बांट लेंगे अपन।
1: अंतिमा मजाक मत करो, ये मामला ना बहुत ज्यादा सीरियस है। इस स्टूडियो से, इस पूरे शहर से और बल्कि इस पूरी दुनिया से कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो है वो लापता हो चुकी है। और सच बताऊं तो मुझे पूरा शक है कि तुम ही ने उसे गायब किया है।
0: यार मुझ पर शक? अरे मैंने तुम्हारी चाय भी नहीं चुराई आज। सीधे सीधे बताओ ना शिल्पा, क्या चोरी हुआ है? ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना तुम बंद कर दो अब। हर जगह सस्पेंस क्रिएट करती रहती हो तुम।
1: अंतिमा सच बताऊं तो चोरी नहीं बल्कि
0: किसका?
1: लाखों मासूमों का। और कातिल कोई और नहीं है,
0: कौन?
1: तुम
0: है?
1: हो।
0: मैं?
1: सिर्फ तुम नहीं, मैं भी, और हम सब इंसान इसके कातिल हैं।
0: ओह नो, डराओ मत यार, साफ साफ बोलो क्या हुआ है। हमारे लिसनर जो सुन रहे हैं हमें, वो भी सोच रहे होंगे कि आज हमारे स्टूडियो में कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है क्या।
1: अंतिमा याद करो कि आखिरी बार तुमने अपने घर की मुंडेर पर चिड़िया को कब देखा था,
0: कब
1: या फिर आखिरी बार रंग बिरंगी तितलियां तुम्हारे पीछे कब भागी थी?
0: गोरैया?
1: हाँ, गोरैया चिड़िया।
0: यार सच कहूँ तो अब तो याद भी नहीं है। मतलब अब तो सिर्फ कौवे या कबूतर ही दिखते हैं और तितलियां तो जैसे गायब सी हो गई है।
1: बस यही तो वो लापता चीजें हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी।
0: अच्छा।
1: और आज 22 मई है अंतिमा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
0: ओहो,
1: वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर सिर्फ हम हक नहीं रखते।
0: हो तो तुम इस जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही हो?
1: हाँ
0: यार शिल्पा, तुम्हारी ये नोकझोंक और ड्रामे करने की आदत ना सीधे सीधे दिल पर चोट करती है मेरे।
1: चोट दिल पर लगना जरूरी भी है अंतिमा जी, क्योंकि हम इंसान जो है वो अंधे हो गए कि तरक्की के नाम पर कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, और इन जो ये बेजुबान हमारे जानवर हैं, पौधे और कीड़े मकोड़े हैं ना, उनके घर हम छीनते जा रहे हैं।
0: और बिल्कुल सही कहा शिल्पा। दोस्तों सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना हो तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फसलें नहीं उगेगी और हम भूखे मर जाएंगे।
1: वो तो है ही सही।
0: हर एक छोटा जीव इस धरती की चेन का हिस्सा है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो हम सब बिखर जाएंगे।
1: और इसी चेन को बचाने की कसम हमें आज खानी है अंतिमा। सरकारें क्या कर रही है वो छोड़ो, हम अपने घर से क्या कर सकते हैं ये सोचो सबसे पहले।
0: हाँ, जैसे प्लास्टिक की थैलियों को बाय बाय करना, अपनी बालकनी में पानी का कटोरा रखना,
1: बिल्कुल,
0: और कम से कम एक पेड़ लगाना।
1: अंतिमा तभी तो ये लापता दोस्त हमारे आसपास वापस लौटेंगे। तो चलिए इसी खूबसूरत मैसेज के साथ सुनते हैं आज की शाम का पहला सुनहरा गीत।

दोस्तों युववाणी कार्यक्रम जारी रहेगा, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के 30वें एपिसोड का प्रसारण। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित कुमारी एन राजन से बातचीत।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे उन्हें एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। भूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा। अम्मा जी, आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं बहुत। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगीरों ने 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
2: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तो कहते हैं कि अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाती रही, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो कोई बात नहीं थी।
2: वो स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से। क्या बात। आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब किया 10th कही 11th कही।

0: जी जी
1: तो पास हो गई थी, आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल, वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
0: अच्छा।
1: तो पिताजी ने कहा तुम आज सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
0: जी।
1: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
0: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
0: अच्छा।
1: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
0: जी।
1: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
0: हाँ।
1: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
0: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
1: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
0: जी,
1: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
0: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
1: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
0: हाँ जी।
1: मेरे गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
0: जी जी,
1: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
0: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं, तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
1: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
0: जी जी,
1: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
0: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो ये सवाल
1: हम,
0: ऐसा है,
1: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे मेरे पेरेंट्स के, तो सभी को बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है, तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
0: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक या किसी तरह का छुहालका फुलका झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
1: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं, तो इसीलिए उनका वो, हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
0: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी, तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुनकर के खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी, वो बहुत ही पॉपुलर
1: है, उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे, वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की, तो कहां शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहां शुरू होता है, और कहां वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
0: था। बिल्कुल सही कहा,
1: लोगों को
0: जी,
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन, तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
0: आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में

0: बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है बीएचयू में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे है। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
0: जी बिल्कुल।
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
0: हाँ जी।
1: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तो, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का? तो लोग कहा कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया।
0: वाह।
1: तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
0: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
1: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
0: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
1: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
0: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
1: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
0: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के साथ

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मोन आकाशवाणी के 30वें एपिसोड का प्रसारण।
1: चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और अब वक्त है हमारे आज के कार्यक्रम के बेहद ही खास सेगमेंट जिसका नाम है चिराग जल रहे हैं। और आज इस कड़ी में हमारे श्रोता सुनेंगे काव्य पाठ भवानी शंकर वर्मा जी से।
5: मेरी कविता का शीर्षक है आओ पेड़ लगाएं। आओ बच्चों पेड़ लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, पेड़ लगाकर प्यारे प्यारे पर्यावरण को हम बचाएं। घर आंगन उपवन में छोटे पौधे लगाएं, फूल खिलेंगे प्यारे प्यारे जिनसे घर आंगन महकाएं। मिलकर सब संकल्प करें, हरी भरी हो धरती अपनी, सब मिलकर पुण्य कमाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हमें मिलेगी ताजी हवा, पंछी को मिलेगा आवास, होगा वातावरण में सुवास, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। फूल जब आ जाएंगे महक उठेगा उपवन, पुलकित होगा तन मन, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। फुदक फुदक कर चिड़िया एक डाली से दूजी डाली, अपना प्यार दिखलाएगी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाकर करें देखभाली, गर्मी में छांव बरखा में पानी, और जीवन में नव रवानी देंगे हर मौसम खुशहाली। आओ बच्चों पेड़ लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, पेड़ लगाकर प्यारे प्यारे पर्यावरण को हम बचाएं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरे मन के पंछी। मेरे मन का पंछी विनती सबसे करता है, छत पर एक सकोरे का इंतजार कब से करता है। रीत चुके हैं ताल तलैया, आभा उपवन की, सूख चुकी है टहनी टहनी, मंद पड़ी है गति पवन की। तुमसे ये आस है, मन में ये विश्वास है, मिल जाए दाना पानी, लगी हमें भी प्यास है।

बात ही है कि बताऊं मैं, जागूं और जगाऊं मैं, चहक उठे सब पात पात, गीत खुशी से गाऊं मैं, हरा भरा हो वास हमारा, निर्मल हो पावन धारा, धरती से आकाश तक सब कुछ हो प्यारा प्यारा, व्याकुल कंठ का हास हुआ, हरी घास का नाश हुआ, जब से ये आधुनिक यंत्रों का विकास हुआ, सहज मिल जाए हमें दाना और पानी, वादा करें हमसे सब अपनी जबानी, मधुर गीतों का जग में इनसे ही साज है, कितनी प्यारी देखो इस चिड़िया की आवाज है, वृक्ष लगाना जगह जगह यही एक चारा है, संतों ने है अपना जीवन पर्यावरण पर वारा है, मेरे मन का पंछी विनती करता सबसे, बची रहे नदियां सारी, चले कभी न वृक्ष पर आरी, मेरे मन का पंछी विनती करता सबसे, बची रहे नदियां सारी, चले कभी न वृक्ष पर आरी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तुम इकलौते नहीं हो। हमारे जीवन में जो संघर्ष, जो कठिनाइयां हमारे सामने आती है, उन सब के मध्य आशावाद का और प्रेरणा का बोध लिए हुए तुम इकलौते नहीं हो। तुम इकलौते नहीं हो इस दुनिया में जो भोग रहे हो दुखों, जी रहे हो कष्टों में, तुम ये सोचते हो कि लंबी लंबी यात्राओं से, भारी वजन के बैगों से, यात्राओं के धक्कों से, जग के तानों से तुम ही परेशान हो, ऐसे और भी जन हैं जिनकी यात्राओं की दूरी, बैगों का वजन, तानों का भार, जीवन की परेशानियां और पैरों का दर्द तुमसे अधिक है। तुम इकलौते नहीं हो। पिता के कठोर वचनों से व्याकुल, जीवन के झंझावातों से, तृष्णाओं के जंजाल में उलझे तुम ही इकलौते नहीं हो। प्रयासों में विफल, यात्राओं से परेशान, हृदय में भार धरे, बदन में दर्द लिए तुम ही इकलौते नहीं हो। संघर्षों के प्रहारों से हार कभी न मानना, गिरकर उठने में ही जीवन समाया है। संघर्ष के मैदान में, दवाओं की कतार में, अपनी बारी की प्रतीक्षा में, दुख के व्यतीत दिनों में तुम इकलौते नहीं हो। अभी और भी हैं जो इस रचना के पात्र हैं, तुम ही इकलौते नहीं हो। इस रचना के पात्र तुम ही इकलौते नहीं हो। इस रचना के पात्र। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जीवन संघर्ष। नित जीवन के संघर्षों में से ही त्योहारों का उल्लास उदित होगा, जो कर्म बोध के पथ पर जागा उसके जीवन में सूर्य उदित हो। नित जीवन के संघर्षों में से ही त्योहारों का उल्लास उदित होगा, जो कर्म बोध के पथ पर जागा उसके जीवन में सूर्य उदित होगा। जिसके हृदय में सवेरा हुआ उसी के त्योहार उसी के बसंत, जिसने संघर्षों का चयन किया उसी का जीवन प्रारंभ हुआ, जिसने संघर्षों का चयन किया उसी का जीवन प्रारंभ हुआ। मन की कोमल कल्पित राहों पर, मन की कोमल कल्पित राहों पर आराम जिसने सदा सादा है, जिस मनुज ने दर्द न झेला ऐसे मानव का जीवन समझो आधा है। घोर अंधेरा काली रातों का जिसने जीवन में देखा, घोर अंधेरा काली रातों का जिसने जीवन में देखा, निराशा की रजनी अवसान पर सर्वोच्च उजालों का हकदार वही है, जिसने अपने हिस्से कर्म को लिया, उजियारा जीवन में दिए जितना, मिली सफलताओं के पश्चात उजालों के दिवाकर उसी के हैं, मिली सफलताओं के पश्चात उजालों के दिवाकर उसी के हैं। सुख दुख की तुला पर, सुख दुख की तुला पर दुख का जिसने चयन किया, सुख दुख की तुला पर दुख का जिसने चयन किया, दर्शन में उसका मुख नहीं मन हृदय को देखा जाएगा, दर्शन में उसका मुख नहीं मन हृदय को देखा जाएगा। मन के उन्मादों का ठहराव हुआ बिन प्रयास ही हार जिसने मानी, जिसके विचारों का अंत हुआ मानो जीवन का भी अंत हुआ।

0: जिसके विचारों का अंत हुआ मानो जीवन का भी अंत हुआ। जीवन संघर्ष के तप से, जीवन संघर्ष के तप से निर्मल जब मन होगा, रोम रोम में संत होगा, जीवन में बसंत होगा। जिसके जीवन में संघर्ष होगा उसी के जीवन में बसंत होगा। नित जीवन में कर्मरत हो उसी के जीवन में बसंत होगा। नित जीवन में कर्मरत होगा उसी के जीवन में बसंत होगा।
1: नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: इतिहास गवाह है शिल्पा, बिना उस कागज के टुकड़े के समान तुम्हें इज्जत नहीं देगा। वो डिग्री ही तुम्हारी असली पहचान है।
7: जो है वो टुकड़ा नहीं बनती है, हुनर है तो है, वरना डिग्री तो सिर्फ एक दीवार की शोभा ही है।
6: अच्छा शिल्पा, डिग्री का फॉर्म भरते हैं ना तो सबसे पहले कॉलम में लिखा होता है कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
7: अच्छा,
6: वहाँ तुम्हारा हुनर फॉर्म में फिट नहीं बैठता है, समझी?
7: अच्छा।
6: डिग्री एक चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है।
7: चाबी अंतिमा, वो चाबी ना पुरानी हो चुकी है, अब ताला ही बदल गया है।
6: अच्छा,
7: आज की तारीख में कोडिंग, ग्राफिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी डिग्रियां नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगलियां चलाने से आता है। गूगल और एलन मस्क ने भी कहा है स्किल्स दिखाओ नौकरी पाओ, डिग्री गई तेल लेने।
6: ओहो तेल लेने, इतनी बड़ी बात,
7: और नहीं तो क्या?
6: एक बात बताओ, अगर तुम्हें दिल का ऑपरेशन करवाना हो तो तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जिसके पास मेडिकल की डिग्री हो, या उसके पास जो कहे कि मैडम डिग्री नहीं है पर यूट्यूब से देखकर ऑपरेशन करने का मस्त स्किल सिखाए मैंने, बताओ?
7: अरे यार, मतलब अब तुम सीधा डॉक्टर और इंजीनियर पे ही पहुंच गई।
6: जी
7: अंतिमा, वो प्रोफेशन अलग है, पर मैं कॉर्पोरेट और क्रिएटिव दुनिया की बात कर रही हूँ। लाखों लोग 5 साल कॉलेज में बिता के डिग्री हाथ में लिए बेरोजगार घूम रहे हैं आज भी।
6: हाँ।
7: क्यों? क्योंकि उनके पास थ्योरी तो है पर प्रैक्टिकल जीरो है।
6: तुम्हारी बात में दम तो है शिल्पा,
7: तो
6: पर सोचो डिग्री सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, वो तुम्हें 3-4 साल का एक अनुशासन, नेटवर्किंग और समाज में उठने बैठने का सलीका सिखाती है।
7: अच्छा।
6: वो तुम्हारा फाउंडेशन है शिल्पा।
7: चलो ठीक है, पॉइंट तो है तुम्हारा, फाउंडेशन जरूरी है, पर अंतिमा सोचो अगर उस फाउंडेशन के ऊपर स्किल्स की इमारत अगर खड़ी नहीं की जाएगी तो वो ढांचा किस काम का है? आज की जरूरत है दोनों का तालमेल।
6: बिल्कुल, यानी डिग्री अगर आपका एंट्री पास है तो स्किल आपकी
7: परफॉर्मेंस है। बिल्कुल,
6: बिना पास के एंट्री नहीं मिलेगी आपको,
7: और बिना परफॉर्मेंस के तालियां नहीं बजेगी।
6: वाह क्या बात कही है, यानी हमारे सुनने वाले दोस्तों, जंग डिग्री बनाम स्किल्स की नहीं है।
7: जी तब होगी जब आपके पास डिग्री का बेस हो और
6: स्किल्स का सुपर पावर हो।
7: तो आज ही अपने हुनर की खोज शुरू कीजिए। आप सुन रहे हैं यूथ से जुड़ा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम
6: युववाणी, अंतिमा और शिल्पा के साथ।
7: बिल्कुल, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा मत।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: दोस्तों चलिए अब फटाफट से अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है करंट अफेयर्स।
6: 8 जनवरी 2026 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने नया संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह इंटरनेट और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
7: इसी के साथ 18 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने AI आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल कौशल से जोड़ना है।
6: हाल ही में भारत सरकार ने नई हरित ऊर्जा नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है।
7: इसी के साथ दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए ग्राहकों को जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है।
6: हाल ही में 27 मार्च 2026 को भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य भविष्य की तकनीकों में भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है।
7: इसी के साथ 18 अप्रैल 2026 को ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 में अंतरिक्ष विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी खोजों को

0: सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों,
1: जानकारी की तरफ। दोस्तों, हम हमेशा की तरह लेकर ऐसी जानकारी जो सिर्फ सुनने भर की नहीं है बल्कि समाज को नई दिशा देने वाली होती है।
0: दोस्तों, योजना है,
1: इस योजना को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक संचालित किया गया।
0: इसका

0: दोस्तों आप लोगों से अलविदा कहने से पहले एक नजर डाल लेते हैं जरा आज के इतिहास पर।
1: आज ही के दिन 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेसली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी।
0: वहीं 1772 में भारत के समाज सुधारक और आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: आज ही के दिन 1990 में उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय हुआ था।
0: 1964 की अगर बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने अपना ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम भी आज ही के दिन शुरू किया था।
1: आज ही के दिन 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी।
0: वहीं 1936 में लॉर्ड ब्रेबोर्न ने बंबई में ब्रेबोर्न स्टेडियम की नींव रखी थी, जिसे कि देश का पहला स्टेडियम कहा जाता है।
1: 1972 में आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन मास्को पहुंचे थे। यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की पहली यात्रा थी।
0: 1984 में आज ही के दिन बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी।
1: 1988 में आज के दिन भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतरद्वीपीय बॉलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल प्रक्षेपण किया था।
0: वहीं 1992 में आज ही के दिन बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे।
1: आज ही के दिन 1878 में गामा पहलवान का जन्म हुआ था। वे विश्व के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारी थी।
0: वहीं 2007 की अगर हम बात करें तो गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार भी आज ही के दिन प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज के इतिहास से जुड़ी जानकारी। आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम और आज के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपके लिए हर बार ऐसी ही नई जानकारी, नई चर्चाएं और हमारी प्यारी प्यारी बातें लेकर आते रहेंगे। फिर अगली बार आप सभी से मुलाकात होगी युवानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अब हम दोनों चलते हैं, हमें दीजिए इजाजत। मैं हूँ शिल्पा
1: और मैं हूँ अंतिमा।
0: आप सभी को हमारा प्यार।

श्रोता भी सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको शेष रहे कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

आपसे थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संकेत। 6:30

शाम 7 बजे कृषक साथी वाले कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चर्चा होगी। डॉक्टर अशोक कुमार साहू वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से ली गई भेंटवार्ता होगी। पशुओं में गर्मी में होने वाले रोग, लक्षण और उपचार जानकारी में आज किसान साथी सुनेंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और इसके साथ ही किसान साथी सुनेंगे लोकगीत के साथ मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक। राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे 7:30 पर और 8:15 पर। एक बार फिर से सुनेंगे आप फिल्म संगीत।

गैर फिल्मी गीत गजल और भजन का आनंद लीजिएगा हमारे सबरस कार्यक्रम में प्रतिदिन की तरह है रात 9 बजे। ये थी शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

ये प्रसारण आकाशवाणी झालावड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है। 6 बजने को है थोड़ी देर में, समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए दो दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं शैलेंद्र सिंह के गाए गीत से। फिल्म है जमाने को दिखाना है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: क्या करें क्या ना करें, गर्मी से कैसे बचें?
1: मैं बताती हूँ, घर से बाहर जाते समय हल्के आरामदायक कपड़े पहने, छाता और धूप का चश्मा जरूर पहने, समय समय पर नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी आदि पीते रहें, और घर में बच्चे, बीमार और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
0: और क्या ना करें?
1: आसान है, धूप में जाने से बचें, बासी भोजन ना करें, चाय, कॉफी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि का अधिक सेवन ना करें, कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
2: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए सुनते हैं आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में यादों की बारात फिल्म का गीत। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: भरने वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा। ला ला ला ला ला ला ला ला।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आरडी बर्मन के स्वर और संगीत में आइए अब सुनते हैं हिफाजत फिल्म का ये गीत।

L.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आरडी बर्मन और किशोर कुमार का गाया गीत फिल्म पुकार में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 6:30 होने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। जयपुर में होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। वहीं अजमेर में

0: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल कर अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियनों और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब ये सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। नगरीय विकास मंत्री झाबरमल खल्ला ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक वक्तव्य में श्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3 सीट सहित 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से चुने गए राज्यसभा के 3 सदस्य नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन 8 जून तक भरे जाएंगे। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 तारीख को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की मंत्री बैठक चल रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब से कुछ देर बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। करीब 3 महीने बाद हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक को कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल की आधारभूत संरचना का काम तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्टेशनों को नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। श्री वैष्णव आज जालौर में भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन

0: तो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भीलड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
1: श्री वैष्णव ने भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। श्री वैष्णव अब से कुछ देर बाद पाली पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इससे पहले रेल मंत्री ने आज सुबह जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ संचालित हो रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समृद्ध जैव विविधता को सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ, सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
1: जैव विविधता दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, साथ ही उन्हें जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पौधे रोपे गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। पाली में भी पर्यावरण संरक्षण शपथ, पौधरोपण और जल संरक्षण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। देश भर में 1 अप्रैल से लागू हुए आयकर कानून को लेकर शुरू किए गए देशव्यापी जनजागरूकता अभियान प्रारंभ के तहत आज जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विभाग की ओर से लाए गए विभिन्न टूल्स के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि नया आयकर अधिनियम छोटा और सुगम है, जिसमें पुरानी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
3: ये नया अधिनियम जो है ये पुरानी की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैटबॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैटबॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
1: राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीग में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही स्कूलों में जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। डीग जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये वैक्सीन बालिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक है।
4: जो HPV वैक्सीन है, बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है, जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग, वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और साहित्य तथा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रेरणादायक कामों के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए 18 वर्ष तक की आयु के

बच्चे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले की चिट्ठी में हम आपको बताएंगे विकास कार्यों, एचपीवी टीकाकरण, नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में। साथ ही होगी बात ग्राम कृषि महोत्सव और हीटवेव की दौर की। किंतु चिट्ठी की शुरुआत ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा के साथ। जिले में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। अधिक मास की शुरुआत के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन और विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई हैं। डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि परिक्रमार्थियों के लिए प्रमुख पड़ाव स्थलों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कई सरकारी विद्यालयों को अस्थायी आश्रय स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिले को करीब 24 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। जल संसाधन मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पिछले दिनों परमदरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ रहे। किसानों की सुविधा के लिए ककड़ा चैनल के जीर्णोद्धार और गुड़गांव कैनाल सिंचाई परियोजना के तहत टेल डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी माइनर्स के पुनरुद्धार कार्यों को पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया गया। इसके अलावा डीग डिस्ट्रीब्यूटरी की दीदावली परमदरा और डीग सब माइनर के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास किया गया। डीग जिले को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जोड़ दिया गया है। इससे इन नदियों का पानी आने वाले समय में मिलेगा। गृह राज्य मंत्री श्री बेढम ने बताया कि पेयजल संकट के समाधान के लिए हर घर नल योजना के तहत अगले 2-3 महीनों में लगभग 40% काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में डीग जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को 13,855 बालिकाओं के वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से 10,000 से अधिक बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है। 72% से अधिक टीकाकरण कवरेज के साथ डीग प्रदेश में पहले स्थान पर है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के तहत जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया सहित अन्य जांचें भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिले में साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति रोकथाम के लिए विशेष कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत हर महीने के पहले शनिवार को विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरे शनिवार को नशे की लत से बचाव के लिए नशे से होने वाले गंभीर नुकसानों के प्रति सचेत किया जाएगा। तीसरे शनिवार को साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में सतर्क किया जाएगा। पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से इन दिनों महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल,

0: कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रही हैं। पिछले दिनों कुम्हेर के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम कृषि महोत्सव रखा गया। इसमें जिले भर से महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों प्रचंड गर्मी और हीट वेव का असर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के मरीजों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सू पहला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत अर करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलों जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेज विकास भयो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल देश माए 47 ठोड़ा राख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सू पहला। श्री मोदी रो ई मौके मौजूद लोगों ने संबोधित करण रो ये कार्यक्रम है। नुआ चुनीचिया कर्मचारी रेल गृह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और विभाग माए कामकाज संभालेला। जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल भेला। अजमेर माए फेवन वाला कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल भेला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत अर करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली माए आज सीमा सुरक्षा बल BSF रा अलंकरण समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह कहो कर ई परियोजना माए ड्रोन, रडार, कैमरा और दूजा तकनीकी साधन शामिल फैला। गृहमंत्री कहो कि स्मार्ट बॉर्डर री सोच रातेत BSF री सुरक्षा प्रणाली माए प्रौद्योगिकी न शामिल कर आवता एक साल माए नी भेजो जा सकबा वालो सीमा सुरक्षा ढांचो विकसित करण सारू काम चाल रियो है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
1: गृह मंत्री कहो कि BSF साल 1965 में 25 बटालियन और सीमित साधना सागे काम शुरू कीनो हो। शाह कहो कि BSF अब 2,70,000 कर्मचारियों री मोटी तादाद सागे सरहद री हिफाजत करन वालो दुनिया रो सब मोटो बल बन क्यों है। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना है। अदालत ए चुनाव इस साल दिसंबर महीना ताई टाल देवन रे सरकार री अर्जी खारिज कर दीनी। हाईकोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा री सदारत वाली खंडपीठ चुनाव प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 20 जून ताई रपट पेश करन रा हुकम दीना। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा अदालत रा फैसला माथे कहो कि सरकार चुनाव कर

0: श्रावण सारू तैयार है। दूजी कानी विधानसभा में विपक्षरा नेता टीकाराम जूली हाई कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो व राज्य सरकार माथे सोच समझ हर चुनाव टाल बारी कोशिश रो आरोप मांडियो। चुनाव आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा कार्यक्रम रो ऐलान कर दिनो है। कार्यक्रम रे मुजब चुनाव री अधिसूचना 1 जून 2026 न जारी करी जावेला। पर्चा 8 जून ताई भरिया जा सकेला और 11 जून ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। 18 जून न वोट पड़ेला और वाई दिन सिंजा रिपोर्ट वोटा ने गिनती करी जावेला। वो चुनाव प्रदेश री 3 सीटा समेत 10 राज्यां री 24 सीटा सारू करायो जावेला। आ 24 सदस्यां रो कार्यकाल जून जुलाई 2026 माय पूरो भे जावेला। राजस्थान नु चुनी जिया 3 सदस्यां नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह रो कार्यकाल 21 जून 2026 न पूरो भे रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत माए आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी ची। अब थोड़ी देर पछे राज्य मंत्रिमंडल रा सदस्य मीटिंग माए करी जिया फैसला री जानकारी देवेला। करीब 3 महीना पाछे भी मंत्रिमंडल री आ मीटिंग खास मानी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाओं जुड़ियो बुनियादी ढांचो तेजी विकसित करी चियो है। श्री वैष्णव आज जालौर माए भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवारी शुरुआत रे मौके राखी जिया जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि पहली राजस्थान माए रेलां रा विकास सारू हर साल 500-600 करोड़ रुपया मिलता है, जबकि अब हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्च कराया जा रहा है।
1: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव भुज बरेली एक्सप्रेस गाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना कीनी। आ गाड़ी भीलड़ी, जालौर, लूणी और जयपुर वैती दिल्ली पुगेला। इनु जालौर री जनता ने पहली दफा दिल्ली ताई सीधा संपर्क रो सुबितो मिल सकेला। श्री वैष्णव रो अब थोड़ी देर पछे पाली माए रेलवे स्टेशन माथे कराया जा रहा विकास रा कामा रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनु पहली रेल मंत्री आज समारे जोधपुर स्टेशन नु 20 डिब्बा वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली कैंट स्टेशन सारू रवाना कीनी। पहली ई गाड़ी माए 8 डिब्बा हा। रेल मंत्री जैसलमेर स्टेशन माथे नुआ बनाई जिया कोच केयर कॉम्प्लेक्स रोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत उद्घाटन कीनो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जनताओं सगला प्राणियां सारू भेड़ो भविष्य बनावण माए मदद करण री अरज कीनी है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके मध्य प्रदेश रा भोपाल माए राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। यादव कहो कि कुदरत रा प्रति इंसान रा मन माए कृतज्ञता रो भाव वे उनो चाहिए।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो यह हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
0: जैव विविधता दिवस रे मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा री ओर एक कॉलेज में विद्यार्थियां सारू सवाल जवाब री होड़ राखी जी और जैव विविधता ने बचावन रा महत्व रे बारा माए जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी री सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम राखी जियो। ये मौके पौधा रोपी जिया और परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। पाली माए पर्यावरण ने बचावन री सौगन लेवन, पौधारोपण और पानी बचावन जुड़िया कई कार्यक्रम।

0: ਖਿੱਚਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਿਆ ਨਵਾਂ ਆਇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਬਾਰਾ ਮਾਇ ਜਾਗ ਜਗਾਵਣ ਸਾਰੂ ਚਲਾਈ ਜਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਰਾਤੇਤ ਆਜ ਜੈਪੁਰ ਮਾਇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰਾਖੀ ਜਿਓ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾ ਆਲਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਬਾਰਾ ਮਾਇ ਵਿਗਤਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਨੀ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵਕੀਲ ਅਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਨੀ ਅਰ ਸੁਝਾਵ ਦੀਨਾ। ਖਬਰ ਨਵੀਂ ਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾਂ ਰਾਜਯ ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਆਇਕਰ ਆਯੁਕਤ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਬਤਾਇਓ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਿਓ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਨੋ ਅਰ ਆਸਾਨ ਹੈ।
1: ये नया अधिनियम जो है ये पुराने की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैट बॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैट बॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
0: ਟਾਬਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਾਨੀ ਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਓਂ ਬਚਾਵਣ ਸਾਰੂ HPV ਟੀਕਾ ਲਗਾਵਣ ਰਾ ਅਭਿਆਨ ਰਾ ਤੇਤ ਡੀਗ ਮਾਏ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਰ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਰੀ ਟੀਮਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮਾਏ ਜਾਰ ਇਮ ਬਾਬਤ ਜਾਗ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਏ ਟਾਬਰੀਆਂ ਰੇ HPV ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਗ ਰਾ ਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੋ ਟਾਬਰੀਆਂ ਸਾਰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਰੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੈ।
2: ਜੋ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓਂ ਕੋ ਬਾਅਦ ਮੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸੇ बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे, तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए 51,000 रूबत्ता नौजवाना ने नौकरी लागन रा कागजात सु पहला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई तय करावन रा हुक्म दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लारला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाओं जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेजी विकास फियो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल।

0: कृषक चौपाल कार्यक्रम सुनबा वाला सभी किसान भाई बहनों को मथुरालाल लवंशी को घणो घणो राम राम।
1: और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी, खासकर अमीर देशों में, तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को

0: व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: भाई साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनावी जाए छे। साथियों, इको मुख्य उद्देश्य छे दुनिया भर में जैव विविधता, पेड़ पौधा, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता के महत्व और संरक्षण और इसके सामने आबावड़ा खतरों के प्रति जागरूकता फैलावो। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2000 में इसको हर साल 22 मई को मनावा की आधिकारिक घोषणा करी थी। ये तारीख 1992 नैरोबी केन्या में जैव विविधता सम्मेलन को अपना बाकी याद में। इस वर्ष का विषय, वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करबो। ये थीम लोगों और समुदायों को वैश्विक लक्ष्यों में योगदान देबा वाला सार्थक कदम उठाबे के लिए प्रोत्साहित करे छे। जैव विविधता का महत्व पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन यह सुनिश्चित करे छे कि प्राकृतिक चक्र जैसा जल चक्र, मिट्टी को निर्माण और जलवायु नियंत्रण सुचारू रूप से चलता रहे छे। मानव जीवन का आधार हमें भोजन, प्राकृतिक संसाधन और जीवन रक्षक दवाएं देवे छे, वह जैव विविधता से ही प्राप्त हो छे। आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटक और वानिकी जैसे क्षेत्र पूरी तरह से स्वस्थ रहे। और देखो, अब मनोरंजन भी कर लियो जावे। अब बार जो गर्मी को टेम छे तो क्यों नहीं अपने एक गर्मी को लोकगीत सुना धनराज जोधपुर की आवाज़ में।

0: अबार अपने दिन आ गया गर्मी का, यो लोक गीत सुनियो, आनंद भी आयो होगो।
1: क्या करें क्या ना करें, गर्मी से कैसे बचें?
2: मैं बताती हूँ, घर से बाहर जाते समय हल्के आरामदायक कपड़े पहने, छाता और धूप का चश्मा जरूर पहने, समय समय पर नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी आदि पीते रहें, और घर में बच्चे, बीमार और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
1: और क्या ना करें?
2: आसान है, धूप में जाने से बचें, बासी भोजन ना करें, चाय, कॉफी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि का अधिक सेवन ना करें, कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
0: और करसान भाई वो आप सुना जानकारी।
4: डॉक्टर अशोक कुमार साहू, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय झालावाड़। कृषक चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
5: राम राम।
4: आज को विषय चेक, पशुओं में गर्मी में होने वाले रोग लक्षण एवं उपचार। गर्मी में पशुओं में कशा कशा रोगों की संभावना रहे?
5: ये गर्मी का महीना चल रहा है और गर्मी काफी अधिक, तापमान काफी अधिक बढ़ चुका है
4: जी, जी।
5: इस दौरान पशुओं की देखरेख बहुत ही जरूरी हो जाती है। जिस तरह से है ना मनुष्य को गर्मी से परेशानी होती है, उसी तरह से अपने पशुओं को भी गर्मी से बहुत अधिक परेशानी होती है
4: जी।
5: सबसे पहले तो गर्मी से होने वाले, जिस तरह से हमें लू लगती है, वैसे जानवरों में लू की लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है
4: जी, जी, जी।
5: हम लोग घर के अंदर रहते हैं, छाया में रहते हैं, फिर भी उसके बाद भी लू लगने की संभावना बनी रहती है
4: जी, जी।
5: परंतु हमारा पशु जिसे हम घर के बाहर रखते हैं और घर के आसपास रहता है, वो अधिकतर टाइम या तो खुले में रहता है या बिना छाया के रहता है, बिना पानी के रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको लू लगने की संभावना अत्यधिक होती है
4: जी, जी, जी।
5: तो इसी को देखते हुए सर्वप्रथम हमें लू से बचने का, या हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, उसकी होने की संभावना पशु में अत्यधिक होती है
4: जी, जी।
5: और इसका मुख्य कारण है जो तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, खासकर दिन के समय में गर्म हवाएं चलती है, पानी की उपलब्धता कम होती है, पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था कम होती है, इसलिए इसकी होने की संभावना अत्यधिक होती है
4: जी, जी, जी।
5: इसके अतिरिक्त क्योंकि खाने पीने का इस मौसम में हरा चारे की उपलब्धता कम होती है, सूखा चारा ही एकमात्र पेट भरने के लिए पशुओं में स्रोत होता है, जिसके कारण पशुओं में अपच जैसी बीमारियां या फिर पेट फूलना, आफरा आना, या उसका खाना पीना बंद हो जाना, या दस्त लगना, या फिर उसका कब्ज हो जाना मुख्यतः होते हैं।
4: सब सब मतलब जैसा मान लो आंफरा आएगी तो अपन कैसे पहचानेंगे भाई ये आंफरा आ रही, के कई लक्षण दिखाई?
5: ऐसे पशुपालकों को अच्छी तरह विदित होता है कि आंफरे में क्या लक्षण होते हैं
4: जी।
5: फिर भी जो लोग जिनकी जानकारी में नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। सीधा सीधा बाघ के पेट की तरफ वाला हिस्सा, पेट का हिस्सा काफी फूल जाता है
4: जी, जी।
5: और हम उस पे हाथ लगाकर देखते हैं तो ऐसा इस तरह से लगता है कि जैसे कोई गुब्बारे में हवा भरी हुई है, और उसको बजाने पे ऐसे धप धप जैसी आवाज आती है, जैसे अंदर से कोई गैस भरी हुई होती है, तो
4: जी।
5: उससे हमें पता लगता है और कि पशुओं में आफरे जैसी समस्या हो गई है, जो कि एक इसके अपच का कारण है।
4: को उपचार के लिए कहीं करनी चाहिए किसान भाई?
5: उपचार के लिए कई तरह के हम घर पर भी इसका निवारण कर सकते हैं
4: जी।
5: तो घर के उपाय होते हैं कि जैसे हमने मीठा तेल पिला दिया, हींग पिला दी इसको
4: जी,
5: इसको ना हमने जैसे अपने घर में आता है मीठा सोडा, अगर बड़ा पशु है तो उसके अंदर हम जैसे गाय या भैंस हुई तो उसे हम 100 ग्राम मीठा सोडा दे सकते हैं, छोटा पशु जैसे गाय जैसे बकरी हुई, बड़ी बकरी हुई, तो इसमें हम एक बार में 25 ग्राम

0: करीब हम मीठा सोडा पानी में घोल के इसको पिला सकते हैं। इसके अलावा भी हम जैसे हमारे घर में जैसे मीठा तेल होता है पिलाने का, हींग होता है, तो वो हम इसमें मिला के भी दिया जा सकता है। फिर भी अगर आफरा ना उतरे, अगर आफरा नहीं उतरता है तो हमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और इसमें अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आफरा बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो पशुओं के अंदर हानि होने की संभावना हो सकती है,
1: हो सकती है।
0: इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें।
1: जी जी जी। और थनेला रोग क्या होता है?
0: थनेला रोग जो पशु अत्यधिक मात्रा में दूध देते हैं
1: जी,
0: तो उनमें कभी कभार ऐसा होता है कि गादी में सूजन आ जाना, दूध कम हो जाना, या फिर फटा हुआ दूध आना, या फिर उसके अंदर दूध के साथ में मवाद आना, या फिर खून आने जैसी समस्या हो जाती है, तो उसको हम थनेला रोग कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, पशुओं की अगर थनेला रोग का उपचार नहीं किया जाए तो उसकी दूध देने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है या कम भी हो सकती है
1: जी।
0: इसके लिए जितना तुरंत हो, जैसे ही दूध देना कम कर दे
1: जी,
0: तो पहले तो पहली बार में तो हमें ऐसा होता है कि किसी एक थन में अगर वो दूध की मात्रा उसकी घट जाती है तो हमें सोच के चलना चाहिए कि हो सकता है कि इसमें थनेला रोग तो नहीं है। तो उसका जितना जल्दी समाधान करवा सके, पशु चिकित्सक से जितनी पहले सलाह ले सके या उसे दिखा सके या उपचार करा सके, तो सबसे बढ़िया रहता है। इस बीमारी के अंदर अगर जितना भी लेट हम करते हैं उतने नुकसान होने की संभावना अत्यधिक होती है, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी होती है कि अगर ये हो जाए एक बार में तो इसे काफ़ी अत्यधिक बार बार इलाज करवाने के बाद भी इसकी सही होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में अगर सही नहीं हो पाता है तो उसमें हो सकता है उसका एक थन या उसके गादी का एक क्वार्टर पार्ट हमेशा के लिए खराब हो जाए। इससे क्या होता है, पशु की जो दूध देने की क्षमता है, उत्पादकता कम हो जाती है हमेशा के लिए।
1: जी जी।
0: इससे बचने का तुरंत उपाय है कि जितना जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से इसका इलाज करवाएं, इस तरह का समस्या ना हो कि दूध दोने से पहले, पहली बात दूध दोने से पहले उसके चारों थनों को अच्छी तरह से एक लाल दवा का घोल आता है, लाल दवा का पाउडर आता है जिसका पानी हम बना लेते हैं, उससे थन को हम धो सकते हैं। और उसके बाद भी जब दूध निकाल लें उसके बाद भी हमें उस थन उस लाल दवा के पानी से उसके थन को धोना चाहिए,
1: धोना चाहिए।
0: और हो सके तो अपने घर में कोई सी भी एक साधारण कोई सी भी एंटीसेप्टिक अगर कोई क्रीम हो तो उनके थनों के जो छेद होते हैं उसको उन पे लेप कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि कोई भी है ना इन्फेक्शन धरातल से उसमें पशुओं के थनों में प्रवेश ना करे। अधिकतर बीमारी जो गंदा जो फर्श होता है उस पे कई तरह का हमारे पास में इन्फेक्शन होता है, थन है उसमें जो छिद्र होता है उसके माध्यम से ये गादी के अंदर या उसके स्तन में चला जाता है, उससे ही ये रोग के होने की प्रबल संभावनाएं होती है
1: जी।
0: और भी अन्य कारण होते हैं कि शरीर में अगर कोई बीमारी है या कोई जैसे बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी गादी के अंदर यह इन्फेक्शन आ सकता है और गादी के वेस्टाइटिस होने की या थनेला होने की संभावनाएं बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो
1: जी।
0: दोनों की परिस्थिति हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर किसी जानवर में जैसे अगर जड़ नहीं गिरी है, बच्चेदानी की सफाई नहीं हो पाई है बच्चा देने के बाद में, तो उसकी हमें सावधानी पूर्वक उसको ना या कहते इलाज करवाना चाहिए
1: जी जी जी,
0: इससे उसकी थनेला रोग होने की संभावनाएं अत्यधिक कम हो जाएगी
1: जी जी जी। और ज्ञापन पशुओं का गर्मी में क्या क्या ध्यान रखें?
0: ज्ञापन पशु का गर्मी में बहुत अत्यधिक ध्यान रखना जरूरी है। ज्ञापन पशु का ही नहीं, एक जो साधारण पशु जो बिना जो ज्ञापन नहीं है या दूध दे रहा है, सभी पशुओं का ध्यान देना अत्यधिक सही अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्ञापन पशु में ज्ञापन होने की वजह से उसमें एक जीव का अलग से उसके ऊपर भार होता है, तो उसको अत्यधिक मात्रा में ध्यान देने की ज़रूरत है, गर्मी से बचाने की ज़रूरत है। हमें अधिकतर कोशिश करें कि पशुओं को अपने को छाया पर रखना है, अगर छायादार स्थान या तो पेड़ के नीचे हो या हमारे पास में कोई शेड करा रखा हो तो उसे पूरे दिन भर हमें छाया की व्यवस्था रखनी पड़ती है। दूसरा उसके लिए 24 घंटे पानी की ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए
1: जी।
0: गर्म पानी में वो हो सकता है गर्म पानी नहीं पिए, अगर पानी गर्म

0: पिएगा तो पानी उसका पीने की क्षमता को कम करेगा। पानी अगर कम पिएगा तो उसमें डिहाइड्रेशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती
1: बढ़ जाएगी।
0: तो इस कारण भी उसमें डिहाइड्रेशन होने की वजह से कई बीमारियां जैसे अपच हुई, या अगर गाभिन पशु है तो ना उसके अंदर अबॉर्शन होने की संभावना है, या उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अबॉर्शन होने की संभावनाएं काफ़ी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इन सब के बचाव के लिए हमें पानी की व्यवस्था, उसके छाया की व्यवस्था ये कर सकते हैं। आजकल नए नए हमारे पास में स्प्रिंकलर वो आ रहे हैं, फंवारा सिस्टम शेड के अंदर लगाने की क्षमता अगर इस तरह की हम बना सकते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा रहता है। साथ में गाभिन पशु को या नॉर्मल पशु जो हमारे हैं, अगर इनको हरे चारे की भी हम उपलब्धता करा सकें
1: जी जी,
0: तो इस मौसम में बहुत अत्यधिक उनको लाभ मिलेगा। इन सबसे जो अपच का जो मुख्य कारण है, या फिर अपना गर्मी से हीट स्ट्रोक या लू लगने जैसी समस्याएं हैं, तो उसकी संभावनाएं क्या होती, कम हो जाती है
1: जी जी।
0: और अगर हम लोग चारे पानी के साथ में अगर उसके बांटे की भी व्यवस्था करें, खान पान की व्यवस्था, मैंने कहा हरा चारा, सूखा चारा और एक बाटा, अगर इन तीनों का ही हम लोग ना एक संतुलित आहार बना के दें,
1: और जैसे बाट खिलाने से, हरा चारा खिलाने से हमारे जो पशु है जैसे गाय या भैंस है, तो ये भी हष्टपुष्ट रहेंगे।
0: ये हष्टपुष्ट रहेंगे। अगर दूध देने वाला जानवर है तो वो दूध अपने अच्छा उसकी उत्पादन क्षमता में बरकरार रहेगी। और जो गाभिन पशु है तो गाभिन पशुओं का जो बच्चा अंदर बच्चा बन रहा है तो वो भी हष्टपुष्ट होगा। ब्याने के बाद में अगर उसे कोई समस्या आती, ब्याने से पहले या बाद में कोई समस्या आती है तो वो समस्या से बचा जा सकता है
1: जी जी जी। और अगर आपने टीकाकरण की बात करा तो
0: टीकाकरण, क्योंकि कुछ दिनों बाद में मानसून सत्र स्टार्ट हो जाएगा
1: जी जी जी,
0: तो मानसून सत्र स्टार्ट होने से पहले, मानसून से पहले पहले हमें ना खासकर HS BQ FMD का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। लार्ज जो बड़े पशु हैं हमारे, तो यह अच्छा समय होता है कि हम उसे बरसात आने से पहले पहले हमारे पशुओं का, बड़े पशुओं का ये टीकाकरण करवा लें तो बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर
1: जी जी जी जी। मतलब समय समय पर टीकाकरण
0: कराना, और ये सही समय होता है क्योंकि बरसात आने के बाद पशुपालक कई बार उनके पास में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि हम जैसे कोई बीमारी आती है तो उस समय हम टीकाकरण करवाएं, लेकिन क्या वो समय सही नहीं होता है। समय सही समय ये होता है जब पशु स्वस्थ हो, या बीमारियों के आने से, मौसम के आने से पहले टीकाकरण हो तो तब जाके उन बीमारियों से बचा जा सकता है
1: जी जी जी। और दुधारू पशुओं की अगर आप बात करें तो मतलब कहीं ध्यान रखना पड़े दुधारू पशुओं को गर्मी में?
0: दुधारू पशुओं को जिस तरह से मैंने बताया कि गर्मी सारा का सारा जितना भी पशुओं की उत्पादक क्षमता हुई या फिर गर्भधारण करने की क्षमता हुई सभी में कमी कर देती है, क्योंकि गर्मी के कारण पशुओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा मतलब एक तरह का दबाव होता है गर्मी की वजह से, वो कंफर्टेबल रहना महसूस नहीं कर पाता है तो उसमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले क्या कर देता है, वो दूध कम कर देता है। अगर उसको हम लोग गर्मी से बचा के रखेंगे, उसमें हम उसके छाया, पानी, हवा, पानी और हरे चारे की व्यवस्था रखेंगे तो वो उसकी दूध की जो क्षमता है उसी तरह रहेगी जैसे दूसरे दिनों में रहती है
1: जी।
0: तो
1: जी।
0: हमें अगर उसका दूध उत्पादन का अच्छा लाभ लेना है तो हमें ये सारी व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी
1: जी जी जी।
0: अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर गर्मी में काम कराओगे तो उसकी उत्पादन क्षमता जिस तरह से कम हो जाती है, या उसको काम करने का मन नहीं होता है, वो आराम करना चाहता है, तो उसी तरह पशुओं में भी होता है कि पशु भी अपने आप को सहज महसूस करने के लिए, इस गर्मी से लड़ने के लिए अपनी दूध उत्पादन क्षमता घटाकर उसका सारा का सारा जो एनर्जी जो उसकी दूध उत्पादन बढ़ाने में लगनी थी वो गर्मी को कंट्रोल करने में लगी जाती है
1: जी जी जी जी जी। तो अंत में डॉक्टर साहब, अंत में सलाह के तौर पर आप कहीं के बचाओ अपना जो पशुपालक भाई है,
0: पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि पशु हमारा एक आर्थिक रोजगार का साधन है, और अगर ये इस पे किसी भी तरह की अगर हानि होती है तो वो हमारा आर्थिक नुकसान करती है, चाहे वो दूध देने की क्षमता कम होती है, या पशु को कोई बीमारी हो जाती है, या किसी वजह से उसका इलाज कराना पड़े हमें, तो इससे उसको आर्थिक नुकसान है। इसलिए उसको रोकने के लिए हमें इस मौसम में गर्मी से बचाव करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको चौबीस, कुछ ना हो सके तो हम उसको छायादार स्थान पर रखें, 24 घंटे पानी, ठंडे पानी की उपलब्धता कराएं, और चारे पानी की उसकी बराबर व्यवस्था रखें।
1: और अगर आपने मान लो पशु लागरों को ये बीमार है तो उसकी सही समय पर देखभाल करा लेनी चाहिए।

0: सही समय पर देखभाल कराने लेना चाहिए और टीकाकरण समय पर करा लेना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है।
1: जी, तो जो डॉक्टर अशोक कुमार साहू, आपने अपना जो पशुपालक भाई है उन्हें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम।
2: अबार आपने जानकारी सुनी। देखो अब आपन देखो गर्मी में गाय राखा, भैंस राखा, बकरियां राखा, तो इनके आपने सही टाइम पे देखभाल कर लेनी चाहिए और छायादार स्थान में बांधनी चाहिए। और देखो जानकारी की बात भी सुना भाई किसान भाइयों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत बढ़िया कल्याणकारी योजना है, जिसको उद्देश्य है पशुपालकों को उनको अमूल्य पशुधन को नुकसान से बचाना चाहिए और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करबो। किसान भाइयों, राज्य के किसान और पशुपालकों के लिया गाय, भैंस, बकरी और ऊंट जैसा दुधारू एवं भारवाहक पशुओं की अचानक मृत्यु होबा पर आर्थिक सहायता देबो, ताकि किसानों को जो नुकसान हुए छे उको उठानो नहीं पड़े, नुकसान से झेलनो पड़े। बीमा और मुआवजा राशि योजना के तहत प्रति पशु 40,000 तक का बीमा कवर प्रदान करी जावे। अगर कोई बीमित पशु की अगर अचानक मर जावे तो पशुपालक को सरकार द्वारा 40,000 तक की वित्तीय सहायता मिल सके छे, मुआवजा मिल सके छे। ये पूरी तरह से निःशुल्क बीमा है, जिसमें पशुपालक को कोई प्रीमियम नहीं देनी पड़े छे। इसमें देसी संकर दूध देवे वाला पशु, गाय, भैंस, भारवाहक पशु, ऊंट और छोटे पशु बकरी वे भेड़ शामिल छे। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड होबो जरूरी छे। और बीमा केवल उन्हीं पशु का करे जावे जिनकी ईयर टैगिंग हो चुकी होती और जो पहले से किसी अन्य योजना से बीमित नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अन्य योजना को दायरों बढ़ाकर 42 लाख पशुओं को कवर करबा को लक्ष्य रखे छे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना छे। और अब देखो बदामी की देवी की आवाज़ में यो सुना लोक संगीत।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है, FM 103.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला गीत। इससे पहले हम आपको बता दें, ये आवाज मोहम्मद रफी की थी, फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन, रचना इंदिवर की थी और धुन बनाई थी उषा खन्ना ने।
1: आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है।
0: ये स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

फिल्म का नाम था दूसरा आदमी और युगल स्वर थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। कार्यक्रम का अगला गीत असद भोपाली का लिखा हुआ, उषा खन्ना का संगीत बद्ध किया हुआ है। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और उषा खन्ना। ये फिल्म है बिन फेरे हम तेरे।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष में आइए सुनते हैं गुलदस्ता।

0: कंपाउंडर, अरे तू बैठा बैठा क्या कर रहा है?
1: कुछ नहीं, मक्खी मार रहा हूँ डॉक्टर साहब।
0: अरे मक्खी के साथ थोड़ी झक भी मारा कर, मुझे लगता है तू बिना नहाए ड्यूटी पर आता है, इसीलिए हमारे अस्पताल में कोई मरीज नहीं आता।
1: अजी मरीज कहाँ से आएंगे, आजकल कोई बीमारी होती नहीं।
2: कौन बोलता है डॉक्टर बजराज कि देश में बीमारी नहीं होती है? देश में कई प्रकार की भीषण भीषण बीमारियां फैली हुई हैं, क्या आप डॉक्टरों को पता तक नहीं?
0: क्या बोलते हैं आप महाशय, भीषण बीमारी कहाँ किधर? कंपाउंडर साहब को कुर्सी पर बैठाओ, मेरा मतलब है कुर्सी लाओ साहब के लिए।
1: लीजिए बैठिए।
2: साहब नहीं, हमारा नाम मणि शंकर है, प्यार से लोग बाग हमें मणि बाबू भी कहते हैं। तो मैं बोलता था डॉक्टर बजरंग
0: जी,
2: देखो ना अब हमारे घर में 8 आदमी हैं, सब के सब बीमार, 4 सीरियस बीमार और 4 लाइट सीरियस बीमार।
0: तो लाइए ना, सबको ठीक कर देंगे। हमारी दवा खाकर जो भी गया वो वापस नहीं आया, मेरा मतलब है फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा। जी
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबको एक साथ लाऊं या एक एक करके लाऊं?
0: एक एक करके लाइए ना।
2: ठीक है ठीक है, तो मैं फिर लेकर आता हूँ। अच्छा
0: जी। अरे कंपाउंडर तू रोज मक्खी मारा कर, अरे ये शगुन तो बहुत ही अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊं?
0: आइए आइए आइए आइए। वाह वाह।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है लवंग लता, उम्र 23 बरस है।
0: माफ कीजिएगा देवी जी, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपको क्या होता है?
3: मुझे पुरुषों की छाया से नफरत है।
0: बाप रे बाप, ये तो काटने को दौड़।

0: डॉक्टर बजरंग, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारिए, ठीक ठीक और बराबर जवाब देगी।
1: अच्छा बेटी घबराओ नहीं, क्या होता है तुमको?
2: मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगी। आज तक जितने जुल्म पुरुषों ने स्त्रियों पर किए हैं उन सब का गिन गिन कर बदला लूंगी। पुरुष खाना बनाएंगे, औरतें नौकरी पर जाएंगी, पुरुष चूड़ियां पहनेंगे, औरतें शमशीर उठाएंगी। भारत की नारी जिंदाबाद, पुरुषों का बायकॉट हो, पुरुषों का सर्वनाश हो।
0: देखा डॉक्टर साहब, इस प्रकार के भाषण रोज घर में करती रहती है।
1: मुनी बाबू, इनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है। आजकल ये बीमारी फ्लू की तरह फैली हुई है। इस बीमारी को लवेरिया कहते हैं।
0: लवेरिया?
1: जी हाँ, लवेरिया।
0: अच्छा, तो डॉक्टर बाबू इसका कोई इलाज?
1: इलाज जी हाँ है, मैं तो हर एक तरह के इलाज करता हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक।
0: इसमें इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे पावरफुल जरा सस्ता इलाज कौन सा है?
1: तो सुनिए, सूरज की किरण 5 तोला, हवा का झोंका 4 माशा और गुलाब की खुशबू 3 रत्ती, इन तीनों को काले पत्थर के तेल में मिलाकर गोली बनाइए और जब मूसलाधार बारिश होती हो तो मैदान में रखकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली सुबह उठने से पहले, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी।
0: ठीक तो हो जाएगी, पर ये सब वस्तुएं, गुलाब की खुशबू, सूरज की किरण, मिलेगी कहाँ से?
1: नहीं मिलेगी तो इसको एंटी लवेरिया का इंजेक्शन दो, ठीक हो जाएगी, समझे? जाइए, कल दूसरे पेशेंट को लाइएगा।

0: कंपाउंडर? अरे जरा रोज मक्खी मारा कर समझा।
1: अरे कल से मैं और भी मक्खियां मारा करूंगा।
2: डॉक्टर बाबू मैं आ गया।
0: आ गया?
2: ये हमारा सबसे बड़ा लड़का है, कौड़ी शंकर।
0: कौड़ी शंकर,
2: डॉक्टर साहब को नमस्ते करो। बताओ कि क्या होता है बेटे तुम्हें?
1: अरे डॉक्टर साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: कल अपना घोड़ा शॉर्ट हेड से मार खा गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। घोड़े की जन्म पत्री भी ज्योतिषी को दिखाई थी, मंगल नवे घर में स्ट्रांग होने से जीतने के चांस ब्राइट थे, पर राहु की दशा खराब होने से हार गया। डॉक्टर, कल रात को मैंने एक सपना देखा। उसमें देखा कि कुएं के पास चारपाई बिछी है, तो कुएं का तो गोल होने की वजह से शून्य हुआ और चारपाई का चौका हुआ। हाँ तो बताओ डॉक्टर, फोरकास्ट पुल खेल दूं क्या? मैं अभी भी रेस की किताब लेकर आया। आप जाइए नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जाइए नहीं, मैं अभी भी आया।
0: मुनि बाबू
2: ये
0: इसको गैम्बुलेंसर हो गया है।
2: अच्छा,
0: ये रोग बिल्कुल कैंसर के जैसा होता है। इसका एक ही इलाज है कि इसके सर पर बर्फ से भरा हुआ मटका रखिए ताकि इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। जाइए कल दूसरे मरीज को लाइएगा।
2: अच्छी बात है, कल दूसरे को लाऊंगा।
0: हाँ जाइए।
1: डॉक्टर साहब, मणि शंकर जी आए हैं केस नंबर 3 लेकर।
0: अच्छा आने दो।
2: आओ बेटे आओ, आओ। डॉक्टर साहब
0: जी आइए।
2: ये मेरा सबसे छोटा लड़का है, जटाशंकर।
3: जटाशंकर?
2: एंड ही इज
0: आउट। कौन आउट?
2: सलीम इज आउट।
0: ओहो, स्कोर क्या है?
2: डोंट यू नो, यस्टरडे इंडिया वाज 4-0 for 8 and today Johnson bowling to Bedi, first ball of the over, Bedi hit the ball and ball is going towards the boundary line and boundary line is coming towards the ball and he is out. Bedi is out.
0: अरे मोनी बाबू, इसको तो क्रिकेटिया हो गया है, बीमारी बिल्कुल पायोरिया जैसी है। इसके मुंह में सुबह से शाम तक 24 घंटे क्रिकेट की बदबू आती है।
2: अच्छा तो इसका इलाज डॉक्टर साहब?
0: इसका इलाज बड़ा सीधा है, टेस्ट मैच में खेली हुई गेंद लाओ, उसको जलाकर मंजन बनाओ और उस मंजन से इसके दांत साफ कराओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा।

0: अरे कंपाउंडर
1: जी साहब,
0: ऐसा लगता है कि तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह एक साथ ही निकल जाएगी। इतने मरीज आ गए हैं, वाह वाह वाह वाह।
1: 6 महीने की नहीं, 7 महीने।

0: ठीक है ठीक है, 7 महीने की सही। मोनी बाबू आइए आइए आइए।
1: डॉक्टर साहब
0: जी जी,
1: ये मेरा बड़ा लड़का करोड़ी शंकर है। परसों जो बड़ा लड़का कौड़ी शंकर आया था ना, ये उसका जुड़वा भाई है।
0: ओ हो हो हो, अच्छा अच्छा। तो कौड़ी शंकर जी, हाँ, तुम्हें क्या होता है बेटे?
2: डॉक्टर मुझसे ये पूछिए कि मुझे क्या नहीं होता है।
0: अच्छा,
2: एक साथ 10-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ।
0: 10-10
2: पर बैड लक
0: हो
2: मेरा नहीं,
0: हाँ,
2: उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते।
0: ओहो,

0: डायरेक्टर मुझसे ये पूछिए कि मुझे क्या नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: एक साथ 10-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ।
1: 10-10
0: पर बैड लक मेरा नहीं, उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज के इन तमाम एक्टरों से कम खूबसूरत हूँ मैं?
1: अरे नहीं भाई, वाह वाह, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हैं।
0: जी खूबसूरती की बात छोड़िए ना डॉक्टर साहब, एक्टिंग देखिए आप मेरी, एक्टिंग
1: एक्टिंग
0: कॉमेडी ट्रेजेडी रोमांस मर्डर मिस्ट्री हर प्रकार की एक्टिंग कर सकता हूँ। ठहरिए, पहले कहानी सुनिए। कैमरा लगा हुआ है और ट्रॉली फॉरवर्ड, कैमरा राजा भाई टावर, रात के 12 बजे, बैकग्राउंड म्यूजिक धनसक धनसक धनसक धनसक, साई साई सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक हसीना अपनी पायल की झंकार का मधुर संगीत बजाती हुई गुजरती है। हीरो की एंट्री, हीरो हीरोइन के पास आकर कहता है, ऐ हसीना तू अपनी पायल को क्यों बजा रही है, क्या तुझे पता नहीं कि टावर के नीचे साइलेंस जोन है? हीरोइन कहती है, मुझे तो याकूब जान कहते हैं। इसके बाद क्रैक क्रैक विलन की एंट्री, विलन पिस्तौल से फायर करता है, कैमरा गोली के साथ पैन वाइप डिसॉल्व, चिड़ियां चहक रही हैं, बुलबुल महक रहे हैं, और
1: अच्छा और आगे
0: पैसों का पहले फैसला कर लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा।
1: ओहो
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक्टिंग देखिए। मैं

0: बस बस बस बहुत हो गया बहुत। मोनी बाबू इसे फिल्मोनिया हो गया है।
1: फिल्मोनिया? हाँ। ये फिल्मोनिया क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ, ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। इसका इलाज बड़ा सीधा है। हर तीसरे दिन नाई को बुलाकर इसके सर पे उस तरह फिरवाकर चमन गोटा कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: ठीक हो जाएगा ना?
0: हाँ।
1: अच्छा तो मैं अब अपनी पत्नी को लाता हूँ। देश की वर्तमान हालत पर उसको बिचारी को दिन रात चिंता लगी रहती है। लेकिन वो इस वक्त तो आपके वेटिंग रूम में जरा मेकअप कर रही है, इसलिए पहले आप मुझे ही देख लीजिए।
0: आप तो अच्छे भले दिखते हैं मुनी बाबू।
1: डॉक्टर साहब हर शायर अच्छा भला दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब मैं पहला शायर हूँ जिसका पहला ही गीत इतना हिट हो गया कि रेडियो से हफ्ते भर में 6-6 दफा बजता है।
0: ऐसा कौन सा गीत है जी इतना हिट के जो 6-6 दफे बजता है? अच्छा मोनी बाबू आप काम क्या करते हैं?
1: अजी डॉक्टर साहब काम काज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। पिताजी इतना पैसा छोड़ गए हैं, इतना पैसा छोड़ गए हैं कि कमाने तक की जरूरत नहीं।
0: ओहो तो आपके घर की सारी बीमारियों का कारण आपके पिताजी का छोड़ा हुआ पैसा है?
1: हैं? क्या बोलते हो?
0: जी हाँ, ये लवेरिया, गैम्बलेंसर, क्रिकेटिया और फिल्मोनिया, इन सब बीमारियों की जड़ घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपके पिताजी के छोड़े हुए सारे पैसे आप किसी स्कूल में दान दे दीजिए तो आपके घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारे घर वालों को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो सारे ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके घर में फुर्सतिया रोग जोरों पर है।
1: पर डॉक्टर साहब ये पैसे जो स्कूल में दे दिए तो सारे बच्चों को बीमारी लग गई
0: तो किसी अस्पताल को दे दीजिए।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब अस्पताल में ही देना है तो क्यों ना मैं आप ही के अस्पताल में दे दूं?
0: जी मेरे मुझे
1: डॉक्टर साहब मैंने अभी पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ देने की बात की आप धड़ाम से बेहोश हो गए। ओ इन अनोखी बीमारियों का अनोखा इलाज करने वाले डॉक्टर बजरंग, कहीं आपको वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसको कहते हैं बेहोशिया?

अनोखी बीमारियां, सुमन माधुरी लिखित ये नाटिका अभी आपने सुनी, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सपना अवस्थी और अनु मलिक के गाए गीत से। फिल्म है चाइना गेट। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: Akashwani at 90. राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
2: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत हिमेश रेशमिया का है और फिल्म है दिल मांगे मोर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ

0: एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन

0: करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बंबई शेयर बाजार का सावधि सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अनुराधा पौडवाल से ये भक्ति रचना।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: और आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की गाई ये गजल।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की एल्बम से, उन्हीं की आवाज़ का ये गीत।

फाल्गुनी पाठक के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सब रस अब समाप्त होता है। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।